मीडियम वेव 1584 किलोहर्ट्ज़, 684 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी करगिल है। सामिन चंद ही लम्हे बाद अब हम आकाशवाणी दिल्ली से नेशनल न्यूज सर्विस के प्रोग्राम रिले करेंगे। रिले का थोड़ी देर इंतजार कीजिए।

0: की है। उन्होंने कहा कि अचानक किसी दवा का दुष्प्रभाव होने पर उसे नजरअंदाज न करें। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन आज से उत्तर प्रदेश के दो दिन के दौरे पर हैं। श्री नवीन आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर मेरठ और सहारनपुर में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पंजाब के बठिंडा जिले के तलवंडी साबो से नशा मुक्त पंजाब यात्रा के चौथे चरण का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉ जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। भारत ने कनाडा में उड़ान प्रशिक्षण के दौरान एक हादसे में तमिलनाडु और पुदुचेरी के दो विद्यार्थियों मनोज शिवकुमार और श्रीसरण तिरुगुनानासंबंधम की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। वैंकूवर में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि दुख की इस घड़ी में वो शोक संतप्त परिवार के साथ है। महावाणिज्य दूतावास ने कहा कि वो पार्थिव शरीर को परिवारों तक पहुंचाने के लिए सभी सहायता देने को तैयार है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज लक्ष्मण राव इनामदार को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि लक्ष्मण राव इनामदार ने राष्ट्र सेवा, संगठन निर्माण और सहयोग के माध्यम से समाज को सशक्त बनाया। जापान एशियाई खेलों में भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में दो पदक जीते। हिमांशु ढिल्लो ने 252.4 अंक के साथ रजत और रुद्रांश पाटिल ने 230.9 अंक के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भी रजत पदक जीता था। हिमांशु ढिल्लो, पार्थ माने और रुद्रांश पाटिल ने दूसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि चीन ने स्वर्ण पदक जीता। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में महिलाओं के 60 किलोग्राम पारंपरिक सेमीफाइनल में सिंगापुर की हुई हुन टो से 0-2 से हारने के बाद सुचिका तारियाल ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Minister of State for Health and Family Welfare Anupriya Patel today said India's journey in pharmacovigilance has been a remarkable example of self-reliance over the years. She said this while releasing the 7th edition of National Formulary of India in New Delhi. The minister said currently more than 1,100 adverse drug reaction monitoring centres are operational in the country, and the government aims to increase this number up to the primary health facility level. She informed that the country now provides pharmacovigilance data to the WHO patient safety database. The minister further highlighted that India has risen from the 123rd rank in 2014 to 8th rank in providing this data to the WHO. President Draupadi Murmu will be on a 3-day visit to Gujarat beginning today. She will preside over the presentation ceremony of the 72nd National Film Awards at Ekta Nagar, Kevadia tomorrow. On Wednesday, the President will grace the 75th Annual Convocation Ceremony of the Maharaja Sayaji Rao University of Baroda at Vadodara. She will also launch Brahma Kumari's campaign, Spiritual Awakening for World Renewal, and inaugurate the Global Spiritual Palace Retreat Centre at Vadodara. The President will virtually launch the campaign Youth for Viksit Bharat, Awakening Inner Strength for Nation Building of Brahma Kumari's Nadiad on the occasion.

घर आंगन। लेकर ढेर सारी जानकारियां और मनोरंजन प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम घर आंगन। आज के अंक में आपके साथ हूं मैं, यानी आपकी रेडियो सखी कल्पना। तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार और जुड़े रहिए मेरे साथ एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और इंद्रप्रस्थ चैनल पर भी, यानी कि 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर। और दोस्तों, साथ ही हमें आप ईमेल भी करते रहिए कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। तो आइए कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत से शेर के साथ कि दिखाएगी असर दिल की पुकार आहिस्ता आहिस्ता, दिखाएगी असर दिल की पुकार आहिस्ता आहिस्ता, बजेंगे आपके दिल के भितार आहिस्ता आहिस्ता। तो दिल के तार जरूर बजेंगे दोस्तों, क्योंकि आपके लिए बजा रही हूँ ये प्यारा सा गीत।

श्रोता हूँ, अभी खूबसूरत सा गीत आप फिल्म रफू चक्कर से सुन रहे थे, जिसे गाया शैलेंद्र सिंह और कंचन ने। और आज है 21 सितंबर, यानी कि एक ऐसा दिन जो हमें शांति, संवेदना और इंसानियत की याद दिलाता है। जी हाँ श्रोताओं, आज विश्व शांति दिवस है। शांति सिर्फ युद्ध न होने का नाम नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार में भी शांति हो, बातचीत में सम्मान हो और मतभेदों में भी हमारे भीतर इंसानियत बनी रहे। और इसके साथ ही आज एक और दिवस भी है जिसे हम जानते हैं विश्व अल्जाइमर दिवस के रूप में। अल्जाइमर हमें ये समझाता है कि जब किसी की यादें कमजोर पड़ने लगे, तब हमें उनकी याददाश्त नहीं, उनका हाथ थामना है। धैर्य और अपनापन ऐसे समय में बहुत बड़ी ताकत बनते हैं। और आज ही तिथि के अनुसार श्री नारायण गुरु का समाधि दिवस भी है। उन्होंने समाज को समानता और मानवता का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि इंसान की जो पहचान होती है उसकी जाति धर्म से नहीं, बल्कि उसके कर्म और इंसानियत से होनी चाहिए। आज के इन तीनों अवसरों का संदेश कहीं ना कहीं एक ही है कि दिलों में शांति, रिश्तों में संवेदना और समाज में समानता, यही एक बेहतर दुनिया की शुरुआत हो सकते हैं। और देखिए ना, इसी बात पे किसी ने एक बड़ा प्यारा सा शेर कहा है कि सात संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, आज

दोस्तों, ये खूबसूरत सा गीत अभी आप सुन रहे थे क्रांति फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर और नितिन मुकेश ने।

एक और खास दिन यानी कि विश्व आभार दिवस, एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि आभार जताने से सिर्फ रिश्ते नहीं जिंदगी भी आसान हो जाती है। कभी किसी ने आपकी मदद की हो, आपका हौसला बढ़ाया हो, या मुश्किल वक्त में बस आपका हाथ थामा हो, तो आज उसे दिल से कहिए धन्यवाद। आभार के लिए बड़े मौकों का इंतजार मत कीजिए। सुबह की चाय, परिवार का साथ, दोस्त की मुस्कान, सेहत, काम और जीवन की छोटी छोटी जो खुशियां हैं, इन सब के लिए शुक्रगुजार होना सीखिए। क्योंकि जब हम शिकायतों से ध्यान हटाकर आभार पर लगाते हैं तो तनाव भी कम होता है और रिश्तों में मिठास भी बढ़ती है। साथ ही हमारा जो मन है ना, वो भी बहुत हल्का हल्का सा महसूस करता है। तो आज एक छोटा सा संकल्प ले, हर दिन कम से कम 3 चीजों के लिए आभार व्यक्त करेंगे। याद रखिए, आभार कोई औपचारिकता नहीं, जीवन को आसान और खुशहाल बनाने की आदत है। और देखिए ना, कितना प्यारा सा एक शेर है इसी भाव पर कि जो खुशियों की वजह दे दे तो उसका शुक्रिया करना, कोई दिल में जगह दे दे तो उसका शुक्रिया करना। और आज के इस विशेष अवसर पर आपके लिए एक खास गीत।

सुनो, ये खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म से, जिसे गाया मोहम्मद रफी साहब और आशा भोसले ने। और आइए अब बात करते हैं जापान के आईची नागोया में 19 सितंबर से शुरू हुए 20वें एशियन गेम्स की, जो 4 अक्टूबर तक चलेंगे, जहां एशिया के खिलाड़ी 43 खेलों में पदकों के लिए मुकाबला कर रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि एशियन गेम्स के शुरुआती दौर में ही भारतीय महिलाओं ने बता दिया है कि मुकाबला जज्बे से कैसे जीता जाता है। तो शुरुआत करते हैं शूटिंग से, जिसमें एलावेनिल वलारीवान ने कमाल करते हुए 10 मीटर एयर राइफल की टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता और फिर व्यक्तिगत स्पर्धा में भी रजत

पदक उन्होंने अपने नाम किया। टीम में उनके साथ सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद भी थी, यानी भारत के शुरुआती दोनों पदक महिलाओं ने दिलाए। वहीं सुचिका तारियाल ने महिलाओं की 60 किलो ट्रेडिशनल मिक्स्ड मार्शल आर्ट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। वे इस वर्ग में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी भी बन गई हैं। और साथ ही आपको बताते हैं कि क्रिकेट में भी शेफाली वर्मा के शानदार शतक की बदौलत भारतीय महिला टीम ने बांग्लादेश को हराया है और फाइनल में जगह बना ली है और एक और पदक सुनिश्चित है। साथ ही हॉकी की बात करते हैं तो भारतीय महिला टीम ने शानदार शुरुआत करी है, यानी कि जो एशियन गेम्स हैं वो अभी शुरू ही हुए हैं, लेकिन लेकिन लेकिन जो भारतीय बेटियां हैं ना, उन्होंने भाई अपने जो इरादे हैं वो साफ कर दिए हैं कि मैदान कोई भी हो, भारतीय बेटियां अनाड़ी नहीं बल्कि असली खिलाड़ी हैं। तो आइए इसी बात पर आपको सुनाते हैं ये प्यारा सा गीत सीता और गीता फिल्म से, जिसे गाया है आशा भोसले और मन्ना डे ने।

दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता था कि भाई पढ़ाई के लिए किताब चाहिए होती थी तो लाइब्रेरी तक जाना पड़ता था, लेकिन आज किताबों की एक बड़ी दुनिया आपके मोबाइल और कंप्यूटर पर मौजूद है। जी हाँ, राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी छात्रों के लिए किसी खजाने से कम नहीं। यहाँ अलग अलग विषयों की किताबें, अध्ययन सामग्री, शोध सामग्री और शैक्षणिक संसाधन एक जगह पर मिल सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि पढ़ाई के लिए हर बार महंगी किताबें खरीदना या दूर की लाइब्रेरी जाना जरूरी नहीं। विद्यार्थी अपनी जरूरत और रुचि के अनुसार सामग्री खोज सकते हैं और अपनी पढ़ाई को बेहतर बना सकते हैं। राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया से जुड़ना जो है वो बहुत आसान है। आपको करना क्या है कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर नाउ से अपना अकाउंट आपको बना लेना है। नाम, ईमेल, पासवर्ड और जो आपकी शैक्षणिक जानकारी जैसी सामान्य जानकारी होती है वो भरनी होती है। और इसको जब आप भरेंगे फॉर्म को, तो भाई आपको बता दें कि इसका जो रजिस्ट्रेशन है ना वो बिल्कुल मुफ्त है, यानी कि निशुल्क है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि NDLI की बहुत सी सामग्री बिना रजिस्ट्रेशन के भी देखी जा सकती है, लेकिन अगर आप अकाउंट बना लेते हैं तो आपको वहां पर कुछ व्यक्तिगत सुविधाएं और कुछ लाइसेंस प्राप्त सामग्री जो है उसका अतिरिक्त एक्सेस मिल सकता है। तो इससे जो है आपकी अतिरिक्त हेल्प भी हो जाएगी। तो भाई छात्रों से तो यही कहना है कि वो इससे जरूर जुड़े, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकती है। तो चलिए भाई, अब हम भी अपना कदम बढ़ाते हैं राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी की तरफ और खुशी खुशी चलते हैं।

श्रोताओं, अभी आप प्यारा सा गीत जो सुन रहे थे पड़ोसन फिल्म से सुन रहे थे और इसे गाया था लता मंगेशकर और आशा भोसले ने। और आइए अब हम बात करते हैं थोड़ी सी सेहत की। हम अक्सर सोचते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है और ये बहुत मुश्किल है, लेकिन दोस्तों ये बहुत आसान है, यकीन मानिए। और इसकी शुरुआत हमारी थाली से ही हो सकती है, यानी कि सही खान पान से हम खुद में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। सही खान पान का मतलब महंगे या मुश्किल डाइट प्लान बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि रोज के खाने में थोड़ा सा संतुलन ही तो लाना है। थाली में आपको दाल, हरी सब्जियाँ और जैसे दूध है और दूध से बने उत्पाद हैं, पनीर है, मौसमी फल, साबुत अनाज और पर्याप्त पानी को जगह देनी है। और साथ ही बहुत ज़्यादा तलाबुना मीठा और पैकेट वाला खाना जो है वो आपको कम करना है या फिर नहीं ही खाइए। और इसका जो असर है वो सिर्फ शरीर पर नहीं बल्कि हमारे मूड और एनर्जी पर भी पड़ता है। तो पेट जब हल्का होता है तो काम में भी मन लगता है और दिन भर सुस्ती भी कम महसूस होती है। और एक अच्छी बात पता है क्या, इसके लिए किसी खास दिन का इंतजार नहीं करना, आज की ही जो आपकी अगली थाली है ना उससे ही शुरुआत कर दीजिए। क्योंकि स्वस्थ जीवन की जो शुरुआत है वो किसी दवा की दुकान से नहीं बल्कि हमारी रसोई और हमारी थाली से ही होती है। सही खान पान, स्वस्थ तन और सुंदर शरीर, इनका बहुत गहरा संबंध है। और यकीन मानिए जब इनका संतुलन होता है ना तो आपकी जो जिंदगी है ना उसका सफर बड़ा ही सुहाना लगता है।

दोस्तों, ये प्यारा सा गीत अभी आप सुन रहे थे अंदाज फिल्म से, और खास अंदाज में सुना रहे थे आपको ये गीत किशोर कुमार जी। तो आइए अब बात करते हैं कुछ शादी ब्याह की, कि भाई देखिए शादी का सीजन जो है धीरे धीरे आएगा, तो शादी के लिए कई बार जो है वो रिश्ता आता है और परिवार को भी पसंद आ जाता है, लेकिन क्या सिर्फ रिश्ता पसंद आ जाना ही काफी है? जिस व्यक्ति के साथ पूरी जिंदगी बितानी है उससे कुछ सवाल पूछने भी तो जरूरी होते हैं। तो भाई सवाल ऐसे हों कि सामने वाले से जब आप पूछें तो आपकी उसके साथ जो जीवन की यात्रा तय करनी है उससे संबंधित सवाल हों। तो आप शादी के बाद कहाँ और किस तरह रहना चाहते हैं, नौकरी या करियर को लेकर आपकी क्या सोच है, घर के काम और जिम्मेदारियां आप कैसे बांटेंगे, पैसों को लेकर आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं और बच्चों को लेकर आपकी क्या राय है, इस तरह के जो प्रश्न हैं वो पूछने बहुत जरूरी हैं। और सबसे जरूरी बात ये भी है कि भाई मतभेद होने पर आप बातचीत कैसे करते हैं। इन सवालों के जवाब सिर्फ हाँ या ना में नहीं बल्कि बातचीत से समझिए, क्योंकि अरेंज मैरिज में परिवार रिश्ता ढूंढ सकता है लेकिन एक दूसरे को समझने और जीवन साथ बिताने का जो फैसला होता है वो आखिरकार दो लोगों का ही होता है, इसलिए भी शादी से पहले सवाल पूछना बहुत जरूरी है। तो झिझकिए बिल्कुल भी नहीं, सही सवाल ही रिश्ते की शुरुआत को मजबूती देता है। और एक बात और आपसे कहना चाहूंगी कि भाई आजकल की जो दुनिया है वहां पर जो रिश्ते हैं वो मैट्रिमोनियल साइट से कई बार जुड़ जाते हैं, तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि सही सही जानकारी आपको हो। तो जो बच्चे हैं यानी भावी जो कपल होने वाले हैं, दंपति होने वाले हैं, उनके जो माता पिता हैं उनको भी आपस में मुलाकात करनी चाहिए, बात करनी चाहिए और अच्छी तरह से एक दूसरे को जानना समझना चाहिए, जांच पड़ताल कर लेना चाहिए। और उसके साथ ही जो लड़का और लड़की हैं भाई उनके लिए भी यही नियम है, उनको भी भले ही वो किसी मैट्रिमोनियल साइट से मिले हैं लेकिन उनको आपस में मिलकर और विभिन्न विषयों पर बातचीत करनी चाहिए कि जीवन को किस तरह से बिताना है, और अच्छी तरह से पूरी जानकारी हासिल करनी चाहिए। कहने का अर्थ यह है ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो आप इन सब कामों के लिए भाई कभी चाय पर भी मिल सकते हैं। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

बताओ, अभी आप ये प्यारा सा जो गीत है सुन रहे थे सौतन फिल्म से, और जिसे गाया लता मंगेशकर और किशोर कुमार साहब ने। और देखिए, हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो श्रोता हैं, उन्होंने ईमेल किया है। नवीन भाटिया जी ने कार्यक्रम वो सुन रहे हैं और उन्होंने हमारे कार्यक्रम की तारीफ भी की है। साथ ही सुदर्शन मुखी जी जो हैं, उनका भी ईमेल आया है तो, और उन्होंने पूरे घर आंगन परिवार को विश्व शांति दिवस की हार्दिक बधाई भी दी है। और उन्होंने लिखा है कि कोई कुछ भी बोले, हमेशा शांत रहो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समंदर को सुखा नहीं सकती। क्या बात है भाई, बहुत अच्छा आपने जो विचार है वो दिया है। और आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि भाई सुदर्शन मुखी जी ने एक वाक्य, एक जो कविता जैसी जो पंक्ति है वो हमें भेजी है, तो मेरे मन में भी कुछ भाव आ रहे हैं। तो मैं बस कुछ पंक्तियां कहती हूँ कि वो सिर्फ घर की चौखट नहीं, वो घर की बुनियाद है। वो सिर्फ घर की चौखट नहीं, वो घर की बुनियाद है। कभी बेटी बनकर हंसती है, कभी माँ की आवाज है। उसके सपनों का भी आसमान है, उसकी अपनी भी कोई उड़ान है। वो रिश्ते निभाना जानती है लेकिन, वो रिश्ते निभाना जानती है लेकिन, उसकी अपनी भी कुछ तो पहचान है, उसकी अपनी कुछ तो पहचान है।

दोस्तों, ये प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं सोनाली और साधना सरगम की आवाज़ में, फिल्म का नाम खून भरी मांग। और इसी गीत के साथ मुझे यानी अपनी रेडियो सखी कल्पना को आज के घर आंगन कार्यक्रम को संपन्न करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि बाजार में आने वाली या इस्तेमाल होने वाली दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी, मूल्यांकन और रोकथाम में भारत की यात्रा आत्मनिर्भरता का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। नई दिल्ली में नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया के 7वें संस्करण को जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। सुश्री पटेल ने बताया कि देश में दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी के लिए फिलहाल 1100 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं और सरकार का उद्देश्य इनकी संख्या प्राथमिक स्वास्थ्य इकाइयों के स्तर तक ले जाने का है। सुश्री पटेल ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन को ये जानकारी देने की सूची में भारत 8वें स्थान पर पहुंच गया है।
1: इंडिया टुडे हैज रिजन फ्रॉम द
2: भारत आज WHO के डेटाबेस में दवा सुरक्षा संबंधी जानकारी साझा करने में दुनिया में 8वें स्थान पर है, जबकि 2009 से 2014 के बीच वे 123वें स्थान पर था। दुनिया के करीब 25 देश भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देते हैं और स्वीकार करते हैं।
1: विच रिकग्नाइज एंड एक्सेप्ट द इंडियन फार्माकोपिया।
0: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर आज मेरठ पहुंचे। श्री नबीन आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर मेरठ और सहारनपुर के दौरे पर हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद श्री नबीन का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का यह पहला दौरा है। इस दौरान उन्होंने बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल और जिला स्तर तक संगठन की तैयारियों की समीक्षा की और कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद किया। श्री नवीन ने सुभारती विश्वविद्यालय में आयोजित युवा संवाद में छात्र छात्राओं से बातचीत की। सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में आवारा पशुओं के लिए आश्रय स्थल बनाने के निर्देश के खिलाफ दायर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ गठित करने पर सहमति व्यक्त की है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली विशेष पीठ ने प्राधिकरण को आश्रय स्थल बनाने का निर्देश दिया था, जबकि ये जिम्मेदारी स्थानीय निकायों और प्रशासन की है। सॉलिसिटर जनरल ने प्राधिकरण की याचिका पर सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की विशेष पीठ के पुनर्गठन का भी अनुरोध किया। दिल्ली उच्च न्यायालय में आज 7 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 50 हो गई है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय ने न्यायमूर्ति निवेदिता अनिल शर्मा, निशा सहाय सक्सेना, संजय शर्मा, भरत पाराशर, अदिति चौधरी, दिनेश भट्ट और अरुण भारद्वाज को पद की शपथ दिलाई। दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने, दूरसंचार पहचानकर्ताओं के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ को लेकर लोगों से सतर्क रहने को कहा है। विभाग ने दोहराया है कि ऐसा किया जाना एक दंडनीय अपराध है, जिसमें 3 साल तक की जेल और 50 लाख

रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। संचार मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे संचार साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए अपने मोबाइल का नियमित रूप से सत्यापन करें। आधुनिक युद्धक क्षमताओं से लैस स्वदेशी जहाज INS सह्याद्री और INS कुलिश फिलीपींस की सुबह खाड़ी पहुंचे। दोनों जहाजों को नौसेना की संचालनगत तैनाती के अंतर्गत भेजा गया है। ये युद्धपोत फिलीपींस में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक और संयुक्त सहयोग गतिविधियों में हिस्सा लेंगे। रूस में सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसदीय चुनाव में बढ़त बना ली है। रूस के केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अनुसार पार्टी ने करीब 58% वोट हासिल किए हैं। अंतिम परिणाम 25 सितंबर तक आने की उम्मीद है। यूनाइटेड रशिया पार्टी ने पिछले चुनावों में 324 सीटें जीती थी। ये चुनाव यूक्रेन के साथ जारी संघर्ष के बीच हो रहा है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 2 पदक जीते। हिमांशु ढिल्लों ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भी रजत पदक जीता था। मिक्स मार्शल आर्ट्स में महिलाओं के 60 किलोग्राम पारंपरिक सेमीफाइनल में सिंगापुर की हुई हुनटो से 0-2 से हारने के बाद सुचिका तारियाल ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 25th typhoon, however, was expected to pass near the Boso Peninsula in Chiba Prefecture from this evening till late night. The storm also disrupted transportation, with some highways closed and possible delays or cancellations of bullet trains between Tokyo and Western Japan. U.S. President Donald Trump has said he is in a decision-making mode over the Iran war, warning that big things are going to happen. His remarks came after Tehran said it had shared its conditions with Washington through mediators for reopening the Strait of Hormuz. The Indian Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over the Andaman and Nicobar Islands, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and Telangana for today. According to the IMD, similar weather conditions are also likely to prevail over coastal Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Karnataka and Madhya Maharashtra during the next 2 to 3 days. In the Asian Games, India secured a double podium finish in the men's 10-meter air rifle event in Nagoya, Japan. Himanshu Dhillon won the silver medal with a score of 252.4, while Rudraksh Patil clinched the bronze with 230.9. Earlier, India had also won the silver medal in the men's 10-meter air rifle team event. And with that, we end this news bulletin.
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीनी वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर।
2: दीदी, नौकरी लग गई।
3: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
2: हाँ जी, नया मोबाइल।
3: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इनसे लोन भी तो मिलता है।
3: पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो।
2: पर दीप,
3: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
2: हाँ जी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
3: अच्छा,
4: आरबीआई कहता है
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
1: श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 1:10 और ये हुए पूरे 47 सेकंड। और आप सभी जानते हैं ये जो वक्त है, ये वक्त है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। एक ही फिल्म से इस कार्यक्रम को लेकर आपके साथ मैं हूं, आपकी रेडियो हम सफर सोनाली। कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार। दोस्तों, एक मौसम का नाम लीजिए जिसमें रंग भी है, इंतजार भी है और प्रेम की एक ऐसी कहानी भी है जो एक जन्म में पूरी नहीं हुई। अब जरा सोचिए, नायिका है मधुबाला, नायक कौन है? भारत भूषण। और संगीत ऐसा कि आज भी सुनते ही दिल वहीं ठहर जाए। पहचान पाए? जी हाँ, बात हो रही है 1958 की फिल्म फागुन की, और शुरुआत उसकी से जिसमें एक परदेसी आता है और आते जाते जाते दिल के साथ एक मीठा सा गम भी छोड़ जाता है। समझ गए ना मैं कौन सी गीत की बात कर रही हूँ? नहीं समझे तो बस इस गाने को सुनिए और फिर मुझे बताइए क्या ये रंग जो है, क्या इस फागुन का रंग आपके भी दिल पर कहीं बरसा, या उसने एक रंग आपके यादों में नया घोला? तो प्लीज बताइए, आपके साथ हम इस फिल्म का पूरा सफर तय करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस गाने से।

जी मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में आप सुन रहे थे फिल्म फागुन का ये गीत। और देखिए दिल तो आप हमारा ले जाते हैं, इतनी प्यारी प्यारी आपकी मेल्स हमें आनी शुरू हो चुकी हैं तो अब हम क्या ही बताएं। तो देखिए ऐसा है कि उन सभी मेलों को हम इसका शुमार करेंगे, शामिल करेंगे अपने इस कार्यक्रम में। लेकिन अगर हम इस फिल्म की कहानी की बात करते हैं, हल्का सा आपको पीछे लेके चलती हूँ उस दौर में जब 1958 में ये फिल्म रिलीज हुई थी, तो इस फिल्म में पुनर्जन्म की कहानी थी। शुरुआत होती है इस फिल्म की बीजन और बनानी, जी हाँ ये है इस फिल्म के हीरो हीरोइन का नाम। जो हीरो है वो एक जमींदार परिवार का बेटा है और जो हीरोइन है वो एक नर्तकी है। दोनों के बीच प्रेम होता है लेकिन परिवार और सामाजिक फासले इस रिश्ते के रास्ते में दीवार बन जाते हैं। मोहब्बत अधूरी रह जाती है लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अधूरी प्रेम कहानी पुनर्जन्म के साथ फिर लौटती है, जैसे कोई रिश्ता वक्त से कह रहा हो कि अभी उसकी कहानी बाकी है। और अब उसी प्रेम की बेचैनी को आवाज देती एक नगमा है, यहाँ पर एक आवाज है आशा भोसले की। और ये जो नगमा है इसे आप सुनिए और फिर मुझे बताइए कि इस गाने का या इस फिल्म का आपके जीवन में कभी कोई असर पड़ा है। तो आपकी ईमेल्स का हम बकायदा यहाँ पर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं, उसके पहले आइए सुनते हैं फिल्म का एक और गीत।

आशा भोसले की आवाज में आप सुन रही थी ये गीत। अब देखिए इस फिल्म में कुल जमा 7 से 8 गाने हैं। पूरी कोशिश है कि आपको हम सारे गाने सुनाएं। अब दूसरे गाने के पहले आपको जरूर बता दूं इस फिल्म से जुड़ी कुछ बातें। जैसे ना फिल्म की खास बात शायद आप भी जानते होंगे और जो नहीं जानते होंगे उनको चौंका दे कि मधुबाला ने इस फिल्म में 3 भूमिकाएं निभाई जबकि भारत भूषण ने 2 भूमिकाएं। यानी एक ही फिल्म में दोनों कलाकारों को अपने किरदारों के अलग अलग रूप और भाव जीने का मौका मिला। मधुबाला के लिए ये उनके अभिनय के अलग रंग दिखाने का एक बहुत बेहतरीन अवसर था। तो अब हम आपको इस फिल्म में मधुबाला पे फिल्माया एक बहुत ही चंचल सा गाना जरूर यहाँ पे सुनाना चाहेंगे। तो आइए सुनते हैं फिल्म फागुन का ये एक और गीत।

तो प्यारी सी चंचल सी, चल बड़ी खूबसूरत दीवा मधुबाला आपकी नजर के सामने आ गई ना। तो हम बात कर रहे हैं फिल्म फागुन की और आपके साथ मैं हूँ आपकी रेडियो हम सफर सोनाली। देखिए इस फिल्म की हम बात करते हैं तो इसका जो संगीत है वो ओपी नैयर का है और इसका संगीत है उसमें एक अलग ही लय है और एक बहुत अलग सी चंचलता भी है। और फागुन में प्रेम कभी बहुत मासूम है तो कभी शरारती है और कभी रूठने मनाने वाला भी है। और प्रेम में रुटना भी हो तो अपने आप में वो एक बहुत खूबसूरत एहसास होता है ना। तो बस शर्त इतनी होती है कि अगर आप प्यार में रूठ रहे हो तो कोई आपको मनाने वाला भी हो। तो आप समझ गए होंगे मैं अब फागुन की कौन से गीत की बात कर रही हूँ। तो आइए सुनते हैं फागुन फिल्म का एक और गीत।

टूटती मनानी और प्यार में दर्द का ये जो नगमा था, ये फिल्म फागुन का है जो हमारी आज की फिल्म है। और अब हम बात करते हैं हमारे दोस्तों की, तो हमारे साथ जुड़ी है संबलपुर काकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। हमारे साथ है संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़ और धर्मवीर जी दिल्ली वाले पिंगावाला चौक गोरैया जालंधर से। फिर है हमारे साथ वंडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। और है हमारे साथ हैं बिट्टू जलालाबाद वेस्ट से हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, तिशानी और निमित आहूजा। फिर हमारे साथ अजीत भावसार जी हैं, इन्होंने खूब सारी जानकारी हमें दी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ हैं वीरम गांव गुजरात से अजीत भावसार के साथ है प्रेमिला भावसार, धन्यवाद। फिर हमारे साथ है कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा गुप्ता और क्षिप्रा गुप्ता। फिर हमारे साथ कौन है जी, ये है हरगांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। शुक्रिया।

रहने के लिए। पूनम गंगनेजा जी, आपका नाम ले चुकी हूँ, शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। फिर हमारे साथ कौन है ये? जी हाँ, ये है बसंत कुमार सिन्हा जी का मेल है ये। इनके साथ है रेखा देवी, अजय, रिमी, बॉबी, अन्विका, तनुश्री, बीके सिन्हा, दमदम एयरपोर्ट कोलकाता से। और ये है वसंतलाल सौ, हीरा मोती, पन्नालाल सौ, इनका भी मेल है, शुक्रिया। फिर है हीरामणी वर्मा, दतरंगी, भाटापारा से। और देखिए, हम बात करते हैं आप लोगों की मेल्स और भी लूंगी, इसके पहले एक गाना और आपके समक्ष रख रही हूँ। तो ये जो गाना है, इसके बारे में आपसे बात कर रही है। इस फिल्म का संगीत जो है वो ओपी नैयर और गीतकार है कमर जलालाबादी। इस जोड़ी ने फागुन के लिए कई लोकप्रिय गीत दिए। इसकी धुनों में लोक और शास्त्रीय रंगों की छाप भी सुनाई देती है। और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि शास्त्रीय रंगों की जो छाप है ना, उसमें कई जो गीत हैं उनमें जिस राग का प्रयोग हुआ है वो है राग पीलू। और यह संगीत जो है फिल्म की कहानी को सिर्फ आगे नहीं बढ़ाता बल्कि उसे यादगार भी बनाता है। तो मतलब संगीत जो है वो इसकी कहानी से गुथा हुआ है। और तो बस चलिए एक और गाना आपको सुनाते हैं। ये आवाज इसमें फिर मुख्य स्वर है आशा भोसले और मोहम्मद रफी की, जो इस फिल्म के संगीत में भी इन्हीं दोनों की आवाजें भी थी।

चाहती हूँ, देखिए घड़ी बिल्कुल भी इशारा नहीं कर रही है कि आपको आगे और इस फिल्म के गाने दो और सुना पाऊँ, लेकिन आपको बता दूँ हमारे साथ जो दोस्त हैं वो हैं, ये हैं डीबी राणा जी, ये हैं हमारे साथ नेहरू विहार दिल्ली से, और फिर हमारे साथ जुड़े हैं पी एस नाहवकर, निर्मला नाहवकर, विशाल नाहवकर, सुपान तायरे, ये हमारे संग नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से जुड़े हैं। फिर है हमारे साथ संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया, बागपत उत्तर प्रदेश से, फिर हमारे साथ जुड़े हैं जगराम साहू, माफ कीजिएगा, और ये हैं ग्रामनगर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से, इनके साथ हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू लल्ला, पूजा प्रांजल, समीक्षा बेबी, आराध्या साहू, प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, यशस्वी वर्मा, आपकी मेल हम ले चुके हैं पहले भी, आप सभी हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते आपको इस फिल्म के बाकी जो दो गाने हैं उनकी हल्की हल्की झलक भी सुनवा के जरूर

दोस्तों ये थी 1958 में रिलीज हुई फिल्म फागुन, और आज हमने सफर ये तय किया इसी फिल्म का, हमारी आज की ये फिल्म थी। और हम किसी और दिन किसी और मौसम का कोई और रंग लेकर आपके साथ जरूर हाजिर होंगे। अब इस कार्यक्रम से मुझे यानी आपके रेडियो हम सफर सोनाली को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: ਤਾਰੀਆਲ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ 60 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਰਵਾਇਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਹੁਈ ਹੂਨਟੋ ਤੋਂ 0-2 ਨਾਲ ਹਾਰ ਕੇ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਮਗੇ ਨਾਲ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਸੁਚਿਕਾ ਤਾਰੀਆਲ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਮਿਕਸਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਦੇ 60 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗ ਵਿਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਪ੍ਰਿਆ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦੇ 21ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਵਫਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ 10 ਮੀਟਰ ਏਅਰ ਰਾਈਫਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ 2 ਤਮਗੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। मरकजी वजीर अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत की किताबुल अदविया को 25 मुल्कों में तस्लीम किया गया है, जिससे खुद किफालत के भारत के काबिल कदर सफर की अक्कासी होती है। उन्होंने दिल्ली में 7वां नेशनल फॉर्मुलरी जारी किया। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी कम्युनिस्ट नजरिए से बहुत ज्यादा मुतासिर है। बीजेपी ने साबिक नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी की रायजनी की मजम्मत की है। वजीर खारजा एस जयशंकर न्यूयॉर्क में अक्वामे मुत्तहदा जनरल असेंबली के 81वें इजलास में भारतीय वफद की क्यादत करेंगे। रूस में पार्लिमानी इंतखाबात में हुकुमरान यूनाइटेड रशिया पार्टी ने सबकत हासिल कर ली है। भारतीय मौसमियात महकमे ने अंडमान निकोबार जजायर, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में आज तेज बारिश होने की पेशगोई की है। और जापान में जारी एशियाई खेलों में मर्दों के 10 मीटर एयर राइफल मुकाबले में भारतीय निशानेबाजों ने 3 तमगे जीते हैं। भारत अब तक 6 तमगे हासिल कर चुका है। अब खबरें तफसील से। सेहत और खानदानी बहबूद की वजीर ममलुकत अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि फार्माकोविजिलेंस यानी दवाओं के महफूज होने और अद्वियात की निगरानी के शोबे में भारत का सफर गुज़श्ता वर्षों में खुद इन्हिसारी की एक काबिल कदर मिसाल रहा है। उन्होंने आज नई दिल्ली में 7वें नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया के रस्म इजरा के मौके पर यह बात कही। मोहतरमा पटेल ने कहा कि सरदस्त मुल्क में दवाओं के नामवाफिक असरात की निगरानी करने वाले 1100 से ज्यादा मरकज काम कर रहे हैं और सरकार ये तादाद प्राइमरी हेल्थ सहूलत की सतह तक पहुंचाना चाहती है। उन्होंने बताया कि मुल्क अब आलमी सेहत तंजीम के मरीजों से मुतालिक सेफ्टी डेटाबेस के लिए फार्माकोविजिलेंस डेटा फराहम करता है। मोहतरमा अनुप्रिया पटेल ने इस बात को उजागर किया कि WHO को ये डेटा फराहम करने के एतबार से भारत अब 8वें मकाम पर आ गया है, जबकि 2014 में 123वीं पोजीशन पर था। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया के 25 ममालिक भारत की फार्माकोपिया यानी किताबुल अदविया को तस्लीम और कबूल करते हैं। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने लोगों से अपील की कि वो अपने तौर पर किसी भी तरह की दवा लेने से गुरेज करें, डॉक्टर की सलाह से ही कोई दवा खाएं और किसी भी दवा के अचानक या गैर मुतवक्के साइड इफेक्ट्स को भी नजरअंदाज न करें। आज बीजेपी ने साबिक नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी की हालिया रायजनी पर कांग्रेस की नुक्ताचीनी की है। पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीजेपी तर्जुबान सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि जनाब अंसारी ने 2019 में लिखी गई एक किताब का हवाला दिया था, जिसमें कहा गया है कि साबिक वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू फिरका वारियत से बड़ा खतरा हिंदू कौम परस्ती को मानते थे। जनाब त्रिवेदी ने मुबीना तौर पर कहा कि आज कांग्रेस बाएं बाजू की जानिब झुक गई है और कम्युनिस्ट नजरियात से बहुत ज्यादा मुतासिर है। उन्होंने मजीद कहा कि साबिक नायब सदर की रायजनी कांग्रेस के नजरिए की अक्कासी करती है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से गुजरात के 3 रोजा दौरे पर रहेंगी। वो कल केवड़िया के एकता नगर में 72वें कौमी फिल्म अवार्ड्स पेश किए जाने की तकरीब की सदारत करेंगी। पेश है एक रिपोर्ट।
2: صدر جمہوریہ سال 2024 کے بھارتی سینما میں حصولیابی کو تسلیم کرتے ہوئے کل قومی فلم ایوارڈز عطا کریں گی. ان ایوارڈز کا سلسلہ 19

0: 1954 में शुरू किया गया था, जो सिनेमा में महारत पर मुल्क के आला तरीन एजाजात में शुमार होते हैं। यह अवार्ड हर साल इत्तलातो नशरियात की वजारत के तरफ से फीचर फिल्म और नॉन फीचर फिल्म पर दिए जाते हैं। इन जुमरों में सिनेमा के बारे में लिखने का अवार्ड भी शामिल है। इन अवार्ड के तहत सिनेमा में तख्लीकी और तकनीकी हुसूलियाबियों का एतराफ किया जाता है। इन 72वें अवार्ड हासिल करने वालों के नामों का ऐलान 3 ज्यूरीज के सदर नशीनों ने 18 जुलाई 2026 को किया था। इनके साथ साथ दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी अता किया जाता है, जो भारतीय सिनेमा का आला तरीन एजाज है। इशिका की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शोएबा।
1: ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान आज बठिंडा में तलवांडी साबू में नशा मुक्त पंजाब यात्रा के चौथे मरहले का आगाज करेंगे। हरियाणा के वजीर आला नायब सिंह सैनी उनके हमराह होंगे। इस यात्रा में उन 3 अहम चैलेंजों पर तवज्जो मरकूज की जा रही है जिनका इस वक्त पंजाब को सामना है। यह है मनुष्यात की बढ़ती लानत, अमन कानून की खराब होती सूरत हाल और हुक्मरानी की सतह पर बदउनवानी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और पुख्ता अहद के साथ ये सफर आगे बढ़ा है और ये सिलसिला आज भी जारी है। सेवा और सुशासन के उनके नजरिए से रहनुमाई हासिल करते हुए सरकार 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की सम्त लगातार काम कर रही है। अपनी खसूसी सीरीज के तहत आज हम इस बात का तस्करा कर रहे हैं कि इस नजरिए को राम मंदिर और तहरीबी बेदारी के अहिया के जरिए किस तरह अमली शक्ल दी गई है।
2: साल 2014 में मरकज में सरकार बदलने और 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की तश्कील के बाद भगवान राम के शहर अयोध्या की कायापलट ने रफ्तार पकड़ी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अजीमुशान राम मंदिर की तामीर के राह हमवार हुई और दीप उत्सव तकरीबात जैसे इकदाम से अयोध्या की खोई हुई सकाफती और मजहबी शान और शौकत बहाल करने का सिलसिला शुरू हुआ। भगवान राम के इस शहर से वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लोगों से जोर देकर कहा कि अगर भारत को 2047 तक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है तो उन्हें अपने अंदर भगवान राम की अकदार को जगाना होगा।
3: राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर भारत को साल 2047 तक विकसित बनाना है, अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा।
2: आज अयोध्या महज आस्था का एक मरकज नहीं बल्कि मजहबी सियाहती कनेक्टिविटी और रोजगार के मौकों के शोबे में नए पैमाने तय कर रहा है। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद आजम खान।
1: वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर अमरीका के शहर न्यूयॉर्क में अक्वामे मुत्तहदा की जनरल असेंबली के 81वें इजलास में आला सतह के हफ्ते के लिए भारतीय वफ्द की क्यादत करेंगे। डॉक्टर जयशंकर इस महीने की 26 तारीख को इस इजलास से खिताब करेंगे। वो अपने दौरे में मुख्तलिफ कसीर मुल्की और दोतरफा मुलाकातें भी करेंगे। मरकजी इंतखाबी कमीशन की जानिब से जारी किए गए इब्तदाई नतायज के मुताबिक मुल्क के पार्लिमानी इंतखाबात में रूस की हुकुमरान यूनाइटेड रशिया पार्टी ने सबकत हासिल की हुई है। पार्टी को तकरीबन 57.5% वोट मिले हैं। हतमी नतायज 25 सितंबर को आने का इम्कान है। यूनाइटेड रशिया पार्टी ने इससे पहले इंतखाबात में 324 सीटें जीती थीं। ये इंतखाबात यूक्रेन के साथ जारी लड़ाई के दरमियान हो रहे हैं और कीव की जानिब से रात भर का एक बड़ा ड्रोन हमला किया गया है। रूसी अहलकारों ने कहा है कि 1900 से ज्यादा ड्रोन इस हमले में शामिल थे जिसमें तकरीबन 2 अफराद की मौत हो गई और तेल की एक रिफाइनरी को नुकसान पहुंचा है। भारतीय मौसमियात महकमे आईएमडी ने आज अंडमान निकोबार जजायर तमिलनाडु पुदुचेरी कराईकल और तेलंगाना में शदीद बारिश की पेशगोई की है। आईएमडी के मुताबिक अगले 2 से 3 रोज के दौरान साहिली आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी इसी तरह का मौसम रहने का इम्कान है। एशियन गेम्स में जापान के नागोया में भारत ने मर्दों के 10 मीटर एयर राइफल टीम मुकाबले में चांदी का तीसरा तमगा हासिल कर लिया है। भारतीय निशानेबाज हिमांशु ढिल्लो ने चांदी का जबकि रुद्रांश पाटिल ने कांसे का तमगा जीता। हिमांशु ढिल्लो पार्थ माने और रुद्रांश पाटिल पर मुश्तमिल भारतीय टीम दूसरे मकाम पर रही है। मिक्स मार्शल आर्ट्स में सुचिका तरियाल ने खवातीन के 60 किलोग्राम रिवायती जुमरे के सेमीफाइनल में कांसे का तमगा जीता है। भारत ने अब तक 6 तमगे जीते हैं। नौजवानों की उम्र और खेलों के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने एशियन गेम्स 2026 में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के खवातीन के रिवायती

60 किलोग्राम जुमरे में कांसे का तमगा जीतने पर सुचिका तरियाल को मुबारकबाद दी है। उन्होंने रुद्रांश पाटिल, पार्थ माने और हिमांशु ढिल्लों को भी मुबारकबाद पेश की है। और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मरकजी वजीर अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत की किताबुल अदविया को 25 मुल्कों में तस्लीम किया गया है, जिससे खुद किफालत के भारत के काबिल कदर सफर की अक्कासी होती है। उन्होंने नई दिल्ली में 7वां नेशनल फार्मूलरी जारी किया। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी कम्युनिस्ट नजरिए से बहुत ज्यादा मुतासिर है। बीजेपी ने साबिक नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी की रायजनी की मजम्मत की है। वजीर खारजा एस जयशंकर न्यूयॉर्क में अफवाह मुत्तहदा जनरल असेंबली के 81वें इजलास में भारतीय वफ्द की क्यादत करेंगे। रूस में पार्लियामानी इंतखाबात में हुकुमरान यूनाइटेड रशिया पार्टी ने सबकत हासिल कर ली है। और जापान में जारी एशियाई खेलों में मर्दों के 10 मीटर एयर राइफल मुकाबले में भारतीय निशानेबाजों ने 3 तमगे जीते हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: Andaman and Nicobar Islands, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and Telangana for today. According to IMD, similar weather conditions are also likely to prevail over coastal Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Karnataka and Madhya Maharashtra during the next 2 to 3 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India-New Zealand free trade agreement finalised comes into force on 20th October, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. Union Minister Anupriya Patel says Indian pharmacopoeia gains recognition in 25 countries, reflecting the country's remarkable journey of self-reliance. Releases 7th edition of National Formulary in New Delhi. BJP says Congress is deeply influenced by communist ideology, condemns former Vice President Hamid Ansari's remarks. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar to lead Indian delegation at 81st session of UNGA in New York. Russia's ruling United Russia Party takes lead in parliamentary election. IMD forecasts heavy rainfall over Andaman and Nicobar, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and Telangana for today. And Indian shooters win 3 medals in men's 10-meter air rifle, taking total tally to 6 at Asian Games in Japan. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर से लागू होगा केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा बाजार में आने वाली या इस्तेमाल होने वाली दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी मूल्यांकन और रोकथाम में भारत की यात्रा आत्मनिर्भरता का उल्लेखनीय उदाहरण दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने दूरसंचार पहचानकर्ताओं के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ से सतर्क रहने को कहा विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे रूस में सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसदीय चुनाव में बढ़त बनाई करीब 58% वोट हासिल किए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तमिलनाडु पुदुच्चेरी कारैक्काल और तेलंगाना में आज तेज बारिश की संभावना और भारत ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 3 पदक अपने नाम किए सुचिका तारियाल ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीता अब समाचार विस्तार से केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता FTA 20 अक्टूबर को दशहरे के अवसर पर लागू होगा नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते के तहत न्यूजीलैंड को होने वाले 100% भारतीय निर्यात पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगेगा उन्होंने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करेगा
2: This strategic partnership.
3: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्ययोजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी
1: इस समझौते से वस्त्र और परिधान चमड़ा और जूते इंजीनियरिंग उत्पाद फार्मास्यूटिकल्स कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद सहित भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे ये समझौता सेवाओं निवेश और पेशेवरों विद्यार्थी और युवाओं के आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर पैदा करता है भारत और न्यूजीलैंड के बीच लंबे समय से घनिष्ठ संबंध हैं जो मजबूत जन संबंधों और व्यापार तथा निवेश कृषि शिक्षा खेल प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग पर आधारित हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की निगरानी में भारत की यात्रा पिछले वर्षों में आत्मनिर्भरता का एक उल्लेखनीय उदाहरण रही है नई दिल्ली में नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया के 7वें संस्करण को जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही सुश्री पटेल ने बताया कि देश में दवाओं के प्रतिकूल प्रभावों के निगरानी के लिए फिलहाल 1,100 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं
4: Today we have around 1150
5: देश में अभी करीब 1150 प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया निगरानी केंद्र और 773 चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी प्रतिकूल घटनाओं के रिपोर्टिंग केंद्र कार्यरत हैं ये केंद्र सरकारी और निजी अस्पतालों तथा मेडिकल कॉलेजों में संचालित हैं अब इन सुविधाओं का विस्तार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र

0: स्तर तक करने की योजना है, जिससे दवा और चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा निगरानी को और मजबूत किया जा सकेगा।
1: Which will make a big change in times to come.
2: सुश्री पटेल ने बताया कि भारत अब दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की निगरानी से जुड़े आंकड़े विश्व स्वास्थ्य संगठन के रोगी सुरक्षा डेटाबेस को दे रहा है।
1: इंडिया टुडे हैज रिजन फ्रॉम द
0: भारत आज WHO के डेटाबेस में दवा सुरक्षा संबंधी जानकारी साझा करने में दुनिया में 8वें स्थान पर है, जबकि 2009 से 2014 के बीच वे 123वें स्थान पर था। दुनिया के करीब 25 देश भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देते हैं और स्वीकार करते हैं।
1: विच रिकग्नाइज एंड एक्सेप्ट द इंडियन फार्माकोपिया।
2: सुश्री पटेल ने लोगों से बिना चिकित्सकीय सलाह के दवा न लेने की अपील की है। दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने, दूरसंचार पहचानकर्ताओं के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ को लेकर सतर्क रहने को कहा है।
0: विभाग ने दोहराया है कि ऐसा किया जाना एक दंडनीय अपराध है, जिसमें 3 साल की तक की जेल और 50,00,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। विभाग ने लोगों से अपना सिम कार्ड किसी और के साथ साझा न करने को कहा है। विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए सिम कार्ड न खरीदें। संचार मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे संचार साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए अपने मोबाइल का नियमित रूप से सत्यापन करें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
2: केंद्रीय संचार राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी ने कल तमिलनाडु के मदुरई में डाक विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला का शुभारंभ किया। उन्होंने दक्षिणी क्षेत्र में इंडिया पोस्ट ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स साझेदारी का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
3: इस पहल के तहत शुरुआत में 3 किसान उत्पादक संगठनों टेनिकी वराठ नाठी फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, मदुरई की मामा मदुरई फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और विरुद्ध नगर जिले की कम्बिकुड़ी कलवाई फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी के साथ साझेदारी की गई। मदुरई प्रधान डाकघर में विक्रेताओं के ऑर्डर के संग्रह, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और भेजने के लिए विशेष भंडारण और ऑर्डर पूर्ति केंद्र भी स्थापित किया गया है। श्री पेमासानी ने सुकन्या समृद्धि खाता योजना के तहत पट्टी गांव को संपूर्ण सुकन्या ग्राम घोषित किया है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी।
4: सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष ये पुरस्कार फीचर फिल्मों, नॉन फीचर फिल्मों और सिनेमा पर लेखन के क्षेत्र में रचनात्मक और तकनीकी उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। 72वें संस्करण के पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 18 जुलाई 2026 को 3 जूरी के अध्यक्षों ने की थी। इन पुरस्कारों को 3 मुख्य श्रेणियों फीचर फिल्में, नॉन फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन में बांटा गया है। साथ ही इसमें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी शामिल। समाचार कक्ष से जया भारती।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर आज मेरठ पहुंचे। श्री नबीन आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर मेरठ और सहारनपुर यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल और जिला स्तर तक संगठन की तैयारियों की समीक्षा की और कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद किया। श्री नवीन ने युवा संवाद में छात्र छात्राओं से बातचीत की। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के लोगों से नशा मुक्त पंजाब यात्रा से जुड़ने और राज्य को नशा मुक्त बनाने में योगदान देने की अपील की है। फटिंडा के तलवंडी साबो में यात्रा के 4थे चरण की शुरुआत करते हुए श्री चौहान ने पंजाब सरकार पर मादक पदार्थों और ड्रग माफिया के खिलाफ तय समय सीमा में कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा पंजाब में ड्रग माफिया को खत्म कर राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए नई शुरुआत करेगी।
5: पंजाब की नशा मुक्ति के लिए अभियान चल रहा है। हम सरकार पर भी दबाव बना रहे हैं। जितने माफिया है उनके खिलाफ हमने अभियान छेड़ा हुआ है। 2 दिन की बहारें हैं जग में, कब जुल्म किसी का चलता है। ये जुल्म का सूरज लाख चढ़े हर शाम को लेकिन ढलता है। आज मैं चुनौती देने आया हूँ। प्रधानमंत्री जी का भी संदेश और अमित जी का भी संदेश लेके आया हूँ।
2: श्री चौहान ने नशे से प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात की।

0: भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की हाल की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। पार्टी मुख्यालय में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अंसारी ने 2019 में प्रकाशित एक किताब का हवाला देते हुए कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हिंदू राष्ट्रवाद को कम्युनिज्म से बड़ा खतरा मानते थे। श्री त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अब वामपंथ और वामपंथी विचारधारा से प्रभावित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर हम विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। वर्षों के इंतजार के बाद हुए भव्य राम मंदिर निर्माण के साथ ही राम की नगरी अयोध्या आज वैश्विक पटल पर धार्मिक पर्यटन और विकास की नई इबारत लिख रही है। राज्य और केंद्र सरकार के प्रयासों से अयोध्या में अनेकों विकास कार्य हुए हैं और पूरी दुनिया में सनातन धर्म के केंद्र के रूप में अयोध्या फिर से प्रतिस्थापित हो चुकी है।
1: 2014 में केंद्र में सरकार बदलने और 2017 में राज्य में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद से ही भगवान राम की नगरी अयोध्या का कायाकल्प शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही वैश्विक मंच पर अयोध्या नगरी धार्मिक पर्यटन और सनातन धर्म की प्रतिष्ठा और विकास कार्यों का पर्याय बनने लगी। इसी राम की नगरी पर प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि अगर देश को 2047 तक विकसित बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जागृत करना होगा।
2: राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर भारत को साल 2047 तक विकसित बनाना है, अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगी।
1: अयोध्या नगर निगम के मेयर गिरीशपति त्रिपाठी ने बताया कि राम मंदिर के निर्माण के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप यहां सांस्कृतिक सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन हुआ है।
3: अयोध्या में जब से राम मंदिर बना है अयोध्या में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। सामान्य रेहड़ी पटरी के दुकानदारों की भी आय 5 गुना से ज्यादा बढ़ गई।
1: पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ही राम नगरी आधुनिक सुविधाओं से युक्त हुई है। अयोध्या आज न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि धार्मिक पर्यटन, कनेक्टिविटी और रोजगार के मामले में नए आयाम स्थापित करके भारत की सांस्कृतिक पहचान और विरासत का वैश्विक प्रतीक बन रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉक्टर जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
4: संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का विषय है विश्वास बहाल करना, बदलाव का प्रबंधन करना। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। वे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने देशों की प्राथमिकताओं और रुख को सामने रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेज ने विश्व नेताओं से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा है कि शांति, गरिमा, न्याय और मानवता के लिए सभी को एकजुट होना चाहिए और बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: रूस में सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसदीय चुनाव में बढ़त बना ली है। रूस के केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अनुसार पार्टी ने करीब 58% वोट हासिल किए हैं। अंतिम परिणाम 25 सितंबर तक आने की उम्मीद है। यूनाइटेड रशिया पार्टी ने पिछले चुनावों में 324 सीटें जीती थी। ये चुनाव यूक्रेन के साथ जारी संघर्ष के बीच हो रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। दोनों पक्ष एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं। वहीं संघर्ष में कूटनीतिक सुलह की संभावना के संकेत भी मिल रहे हैं। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारैक्काल और तेलंगाना में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन तक तटीय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका और मध्य महाराष्ट्र में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। जापान एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का पदक जीतने का सिलसिला आज भी जारी है। भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 2 पदक जीते। हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले हिमांशु ढिल्लो, पार्थ माने और रुद्रांश पाटिल की टीम ने

0: पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। वहीं सुचिका तारियाल ने मिक्स मार्शल आर्ट्स में महिलाओं के 60 किलोग्राम पारंपरिक स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बढ़ाई गई ईपीएफओ वेतन सीमा पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर से लागू होगा। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा, बाजार में आने वाली या इस्तेमाल होने वाली दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी, मूल्यांकन और रोकथाम में भारत की यात्रा आत्मनिर्भरता का उल्लेखनीय उदाहरण। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारैक्काल और तेलंगाना में आज तेज बारिश की संभावना। और भारत ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 3 पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 1584 किलोहर्ट्ज़, 684 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी करगिल है। सामिन पेशे खिदमत है एनसीईआरटी का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग।

0: सत्संग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए श्रोताओं, करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं,
2: मन शांत हो तो हर कठिन परिस्थिति भी एक नई और महत्वपूर्ण सीख बन जाती है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू लिखते हैं,
1: सादर नमस्कार, ये मेरा प्रशंसा पत्र है। उमंग कार्यक्रम का मैं नियमित श्रोता हूँ, इससे हमारा भरपूर मनोरंजन तो होता ही है, हमें सीख और प्रेरणा भी मिलती है। बेहतरीन प्रस्तुति के लिए पूरे टीम को हार्दिक बधाई और धन्यवाद।
2: भट्टीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मेहू।
1: और ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अब्बान अब्बासी।
2: रानी गांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्र रेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न था आपसे कि दक्षिण अमेरिका के उस फल का नाम बताइए जिसे मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था।
2: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों, कोकोवा या कोको फल का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था।
1: और हमारा दूसरा प्रश्न था कि चिपको आंदोलन की शुरुआत मूल रूप से किस गांव से हुई थी।
2: तो श्रोताओं, इसका उत्तर है चिपको आंदोलन की शुरुआत मूल रूप से राजस्थान के खेजडली गांव से हुई थी।
1: और फिर हमने आपसे पूछा था कि जापान की कोदामा परंपरा में विशेषकर पुराने पेड़ों को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, ऐसा क्यों?
2: उत्तर है साथियों, जापान की कोदामा परंपरा में विशेषकर पुराने पेड़ों को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि इन्हें जीवात्मा माना जाता है। ये ऐसे वृक्ष होते हैं जो जंगल के दूसरे पेड़ पौधों का भी पोषण करते हैं।
1: और हमारा अगला सवाल बड़ा मजेदार था। हमारा सवाल था श्रोताओं, यदि कोई स्वार्थवश जंगल में लकड़ी काटने जाए तो जंगल का रक्षक लेशी उनके साथ क्या करता है?
2: उसका उत्तर है साथियों, लेशी उन्हें जंगल में भटका देता है।
1: जी, और हमारा अंतिम प्रश्न था आपसे कि खासी समुदाय के बुजुर्गों और ग्राम प्रधानों का

0: जवानों और बच्चों को जंगल के बारे में दिया जाने वाला मूल संदेश क्या है?
1: खासी समुदाय के बुजुर्गों और ग्राम प्रधानों का संदेश है, जंगल हमारा नहीं है, हम बस इसके रखवाले हैं।
0: तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर, और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, राष्ट्रगान जन गण मन को संगीतबद्ध किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: राष्ट्रगान जन गण मन को संगीतबद्ध किसने किया था?
0: श्रोताओ, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं। हमारा निवेदन ये भी है कि इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को ताज़ा तरीन जानकारी के लिए जरूर फॉलो करें।
1: जी, और आपको बता दें कि अब NCERT की कक्षा 9 तक की नई पाठ्य पुस्तकें किसी भी सर्च इंजन द्वारा NCERT की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती हैं। टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF।
0: और यदि आप इन पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।
1: जी,
0: वहाँ आप हमारे शैक्षिक कार्यक्रम भी जब चाहें सुन सकते हैं। और अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है, दिस इज माई टाउन।
1: अंग्रेजी की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित कविता को संगीत रूप में प्रस्तुत करते हुए ये कार्यक्रम नगर की बनावट, साफ सफाई और कूड़ा निपटान समेत स्वच्छ पर्यावरण बनाए रखने का संदेश देता है।

नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए NCERT असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है।

0: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम का शीर्षक है जगमगाता गांव।
1: इस कार्यक्रम में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन के जीवन का एक प्रेरक प्रसंग लिया गया है और विशेष रूप से संदेश दिया गया है कि हमें अपने विचारों को कर्म में भी प्रकट करना चाहिए, अन्यथा उनका कोई मूल्य नहीं है।

0: इंडियंस भी कहा जाता था। आगे चलकर जब सभी राज्यों का एकीकरण हुआ तो ये संयुक्त राज्य अमरीका बना। ये वही अमरीका है जिसे इतालवी नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस ने खोजा था और इसे नई दुनिया का नाम दिया था।
1: कोलंबस निकले तो थे भारत को खोजने, लेकिन पहुंच गए अमरीका। तो आइए मित्रों, इस जानकारी के साथ अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये 17वीं शताब्दी के आरंभ का काल था। उन दिनों आज की तरह आधुनिक सुविधाएं नहीं थी।
0: मोटरगाड़ी, टेलीफोन, चलचित्र, समाचार पत्र कुछ भी नहीं था। यातायात के साधन नहीं के बराबर थे और लोग आवागमन के लिए या तो पैदल चलते या पशुओं का इस्तेमाल करते थे।
1: बिजली भी नहीं थी, इसलिए रात को लोगों को यात्रा करने में बड़ी परेशानी होती थी। जो सड़कें थीं, वे भी खस्ताहाल थीं। बारिश के समय वहां बड़े बड़े गड्ढे बन जाया करते थे और उनकी मरम्मत करने वाले नहीं के बराबर थे। और तो और, अधिकांश सड़कें कच्ची ही थीं।
0: इन कारणों से वहां दुर्घटनाओं का होना आम बात थी। रात के अंधकार में यात्रा करने वाले मुसाफिर और मुख्य रूप से व्यापारी अक्सर दुर्घटनाओं का शिकार होते थे। हर रोज कोई न कोई ऐसी घटना होती ही रहती थी।
1: ज्यादातर व्यापारी ही इन दुर्घटनाओं का शिकार इसलिए होते थे क्योंकि उन्हें अपना सामान लेकर सुबह सुबह मंडियों में पहुंचना होता था और इसलिए उन्हें रात भर सफर करना पड़ता था।
0: अमेरिका के वर्जीनिया प्रांत में एक गांव था, नाम था पोप्स क्रीक। इसी गांव में एक बालक रहता था। उसके गांव में भी इस तरह की दुर्घटनाओं का होना आम बात थी। जब कोई भी उस गांव से रात को गुजरते हुए दुर्घटना का शिकार होता तो उस बालक को बहुत दुख होता।
1: लेकिन किया ही क्या जा सकता था, उसे कोई समाधान दिखाई नहीं पड़ता था। उसने अपने गांव के बड़े लोगों से बात भी की, लेकिन सबने हंसकर टाल दिया। लोग उस बच्चे का मजाक भी उड़ाते थे। उसके पिताजी अक्सर अपने व्यवसाय के कारण बाहर ही रहते थे।
0: लेकिन वो बच्चा इस समस्या के समाधान के लिए लगातार सोचता रहता। एक दिन की बात है, उसने अपनी माँ से कहा।
2: माँ।
3: हाँ बेटा।
2: मुझे बहुत बुरा लगता है जब रोज हमारे घर के सामने दुर्घटना होती है। कोई ना कोई रोज हमारे घर के सामने गड्ढों में गिरता है।
3: हाँ बेटा, पर ये कोई नई बात तो है नहीं।
2: हाँ पर
3: देखो, ऐसी दुर्घटनाएं तो पूरे गांव में हो रही हैं और दूसरे गांव में भी होती हैं।
2: पर माँ हमारे
3: लेकिन बेटा, इसमें भला हम क्या कर सकते हैं? सड़कें खराब हैं और अंधकार भी तो है, तो दुर्घटनाएं तो होंगी ना बेटा।
2: जरा सोचो ना माँ, लोग इसी तरह दुर्घटनाओं का शिकार होते रहते हैं, क्या हम चुप्पी साधे बैठे रहेंगे?
3: अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, अब तुम जाओ और अपनी पढ़ाई करो, मेरे पास बहुत काम है, मुझे जाने दो।
2: अरे लेकिन माँ सुनो ना।
3: अरे बेटा, मैंने
2: कहा। अरे सुनो, उफ माँ।
3: अरे बेटा, मेरे पास बहुत काम है, मुझे जाने दो।
2: माँ

0: देखो बड़े बड़ों से कुछ नहीं हुआ और तुम करोगे।
1: हाँ माँ, माँ कैसा रहेगा यदि हम अपने घर के बाहर एक लैंप रख दें या लालटेन टांग दें?
0: बेटा जॉर्ज, तुम कैसी बातें करते हो? लालटेन टांग दें, इससे क्या होगा भला?
1: माँ मुझे दे दीजिए ना एक लालटेन।
0: बेटा
1: मैं जल्दी लालटेन को घर के बाहर लटका दूंगा।
0: अरे इस छोटी सी लालटेन से क्या होगा, क्या दुर्घटनाएं रुक जाएंगी? सारा गांव इस बात पर हंसी उड़ाएगा हमारी।
1: हंसने दो ना माँ, हम लोगों को यूं ही चोट खाने के लिए नहीं छोड़ सकते। मैं मानता हूँ कि सारी दुर्घटनाएं नहीं रुकेंगी, लेकिन
0: लेकिन क्या बेटा?
1: कम से कम हमारे घर के सामने तो दुर्घटना होनी कम हो जाएगी ना। लालटेन से लोगों को रास्ता दिख जाएगा और वे बच जाएंगे। लाओ मुझे एक लालटेन दे दो माँ, दे दो ना माँ, दे दो।
0: अरे बेटा सुनो तो
1: माँ, एक लालटेन दे दो।
0: देखो बेटा इससे कुछ नहीं होगा और तुम लालटेन उठाकर, अरे तुम,
1: अरे माँ लालटेन दे दो।
0: अरे लालटेन लेके कहाँ जा रहे हो? अरे बेटा रुको तो सही। ओहो सुनो तो, देखो ये बच्चा मानता ही नहीं है। ठीक है जैसा तुम सोचो।
2: एक दो दिन के लिए ऐसा करने में हर्जी क्या है? करके देखता हूँ कहाँ रखूँ, कौन सी जगह, यही ठीक रहेगा। कुछ नहीं करने से कुछ करना तो अच्छा है।
3: साथियों उस बालक का नाम था जॉर्ज। उसने जलती हुई लालटेन उठाई और घर के बाहर लटका दी। वो देखना चाहता था कि इसका क्या असर होता है। रात भर वो जागता रहा।
4: सुखद आश्चर्य, व्यापारियों और यात्रियों का झुंड वहां से गुजरता रहा, लेकिन उस रात उसके घर के आगे कोई दुर्घटना नहीं हुई।
3: सुबह वो बच्चा भागा भागा माँ के पास पहुँचा।
1: माँ माँ माँ,
0: अरे अरे बड़ी खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है?
1: देखा आपने रात को लालटेन टांगने का असर, मैं तो सारी रात जागता रहा।
0: क्या क्या कह रहे हो तुम, क्या वहाँ पे एक भी दुर्घटना नहीं हुई?
1: नहीं माँ, एक भी नहीं।
0: अच्छा, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा कि हमारे घर के सामने किसी को चोट नहीं लगी। तुमने बहुत अच्छा काम किया बेटा।
1: मैं कहता था ना माँ, कुछ नहीं करने से कुछ करना अच्छा है। अब तो मैं गांव के लोगों को भी ये बात बताऊंगा।
0: हाँ ये जरूर करना, तुम सबको बताना।
1: हाँ माँ,
0: बहुत अच्छा काम किया बेटा, मैं तुम विश्वास ही नहीं करती थी, बहुत अच्छा।
3: तो साथियों जॉर्ज को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसकी माँ को भी बात समझ में आने लगी थी। उन्हें लगा कि यदि हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं कि कम से कम हम अपने घर के बाहर होने वाली दुर्घटनाओं को तो कम कर ही सकते हैं। कुछ लोगों ने उनकी हंसी जरूर उड़ाई, लेकिन उन्होंने अब रोज रात को लालटेन टांगना शुरू कर दिया।
4: उन्हें बहुत अच्छा लगा जब कई राहगीरों ने रात को उनके घर का दरवाजा खटखटाया और इस बात के लिए उन्हें धन्यवाद दिया।
3: धीरे धीरे ये चर्चा सारे गांव में होने लगी और लगभग सभी लोगों ने अपने अपने घर के सामने लैंप या लालटेन रखना शुरू कर दिया और परिणाम ये हुआ कि दुर्घटनाएं होनी बिल्कुल बंद हो गईं।
4: राहगीर जब दूर से आते तो उन्हें उस गांव को जगमगाता देखकर बड़ी प्रसन्नता होती। अब तो दूर दूर तक इस गांव की चर्चा होने लगी और लोगों ने इस गांव का नाम रखा द विलेज ऑफ लाइट्स।
3: विलेज ऑफ लाइट्स यानी जगमगाता गांव। साथियों देखा आपने कैसे एक बालक की सोच और इच्छा शक्ति ने सारी परिस्थिति बदल दी। धीरे धीरे आसपास के गांव के लोगों ने भी ऐसा ही करना शुरू किया और वो क्षेत्र दुर्घटना मुक्त हो गया। इसी बात से प्रेरणा लेकर बाद में सड़कों के किनारे तेल के लैंप पोस्ट लगने शुरू हो गए।
4: हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि यदि कोई कुछ नहीं कर रहा है तो हम भी क्यों करें। कोई करे या ना करे, यदि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं तो हमें जरूर करना चाहिए और वो भी पूरी लगन से, जैसा कि उस बालक ने किया।
3: साथियों वो बालक जॉर्ज कोई और नहीं, उसका नाम था जॉर्ज वॉशिंगटन, जो आगे चलकर

0: साथियों, उस बच्चे ने हार नहीं मानी और अपने पिता से भी बात की। उसने गांव के बड़ों से भी बात की, लेकिन कोई हल नहीं निकला।
1: वो बच्चा लगातार सोचता रहता कि क्या किया जा सकता है, लेकिन कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था। एक दिन की बात है, शाम हो गई थी और रात्रि भोजन का समय हो गया था। सब डिनर करने बैठे थे।
2: लो बेटा, अरे क्या बात है बेटा, तुम तो कुछ खा ही नहीं रहे हो। बताओ बताओ क्या सोच रहे हो।
3: हाँ माँ, मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ। बेशक बहुत बड़ा समाधान तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हम कुछ तो कर ही सकते हैं।
2: कुछ कर सकते हैं? भाई क्या समाधान

0: अमेरिका के संस्थापक और प्रथम राष्ट्रपति बने।
1: जी हाँ साथियों, आप ये ना देखें कि कोई क्या कर रहा है या क्या कर सकता है, आप ये देखें कि आप क्या कर सकते हैं। यदि आप परिवर्तन चाहते हैं तो सबसे पहले वो परिवर्तन आप स्वयं बनिए।
2: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
2: और अब सुनते हैं कार्यक्रम
0: भाई मट्टू और घड़ी।
3: एक दिन का जिक्र है, भाई मट्टू खेलते खेलते बावर्ची खाने में घुस गए। वहां दीवार पर घड़ी लगी थी, बस देखते ही उछल पड़े, सीधे चट्टू के पास भागे। इतने तेज कि बस कुछ पूछो मत। चट्टू के पास पहुंचे तो सांस फूला हुआ था, मुंह से आवाज नहीं निकलती थी। मट्टू बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाल कर बोले,
4: अरे चट्टू, वो दीवार पर टंगी है बावर्ची खाने में, और भाई बहुत ही खूबसूरत है।
5: आखिर क्या चीज?
4: घड़ी। घड़ी और क्या, और इसमें कुछ लटक भी तो रहा है, जाने क्या है, इधर आता है उधर जाता है, बस हिलता रहता है और ऐसे बोलता है जैसे टिक टिक टिक टिक। सुनो सुनो, आ रही आवाज।
3: चट्टू भाई ने थोड़ी देर आवाज की तरफ कान लगाए और बोले,
5: हाँ भैया, आ तो रही है।
3: इतना कहकर वो भी बावर्ची खाने की तरफ बहुत तेजी से भागे कि जरा एक नजर देख लें।

0: वहां पहुंचकर बोले, अरे भैया ये तो पेंडुलम है।
1: पेंडुलम?
0: वही जिसे मास्टर साहब उस दिन रक्कास कह रहे थे।
1: आहा भाई ये तो बड़ा अच्छा झूला है।
0: चट्टू भाई झट से उस पर कूद कर चढ़ गए। अब मट्टू भाई को कहां ताप थी, उन्होंने भी एक छलांग लगाई और झूले पर सवार हो गए। चट्टू भाई बोले,
1: भैया टिल्लू खिल्लू और जग्गू मग्गू को भी बुला लाएं।
0: मट्टू बोले,
2: हाँ हाँ जरूर।
0: दोनों उतरे और थोड़ी देर में अपने साथ फौज की फौज ले आए।
2: देखो ये है वो झूला, मगर अब सूरत क्या हो। अच्छा यूं करें कि दो दो करके बारी बारी झूलें। पहले हम झूलेंगे, हमारा हक पहला है, हम ही ने तो इसका पता लगाया है।
0: मगर वो चारों पांचों अकड़ने लगे।
3: वाह साहब वाह, पहले हम झूलेंगे, तुम अपनी बारी ले चुके और जाने कितना झूल चुके हो।
0: अभी ये बहस हो रही थी कि घड़ी की सुई ठीक 12 के हिंसे पर आ गई। अचानक एक खटके के साथ

0: उठा, गिरता पड़ता बुरी तरह भागा।
1: पढ़िए और समझिए।
0: कान लगाना,
1: ध्यान देना।
0: रक्कास,
1: नाचने वाला।
0: ताब,
1: ताकत, बर्दाश्त।
0: हिंसा,
1: नंबर, अदद। इन सवालों के जवाब दीजिए। सवाल नंबर एक,
0: भाई मट्टू खेलते खेलते कहाँ पहुँचे?
1: सवाल नंबर दो,
0: घड़ी की आवाज कैसी थी?
1: सवाल नंबर तीन,
0: घड़ी के किस हिस्से को मट्टू ने झूला बनाया था?
1: सवाल नंबर चार,
0: चट्टू टिल्लू खिल्लू और मट्टू डर कर क्यों भागे?
2: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो उमंग की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अर्शद, कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सपहर के 3 बजे हैं हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात का आगाज होता है।

मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। 3:05 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशर होंगी।

की अक्कासी करती है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर अमरीका के शहर न्यूयॉर्क में अक्वामे मुत्तहदा की जनरल असेंबली के 81वें इजलास में आला सतह के हफ्ते के लिए भारतीय वफ्द की क्यादत करेंगे। डॉक्टर जयशंकर इस महीने की 26 तारीख को इस इजलास से खिताब करेंगे। वो अपने दौरे में मुख्तलिफ कसीर मुल्की और दोतरफा मुलाकातें भी करेंगे। डॉक्टर जयशंकर न्यूयॉर्क का दौरा ऐसे वक्त कर रहे हैं जब आलमी रहनुमा 22 से 28 सितंबर तक मुनक्किद होने वाले आला सतह के सालाना जनरल बहस मुबाहिसे के लिए अक्वामे मुत्तहदा के सदर दफ्तर में यकजा होने की तैयारी कर रहे हैं। मरकजी इंतखाबी कमीशन की जानिब से जारी किए गए इब्तदाई नतायज के मुताबिक मुल्क के पार्लिमानी इंतखाबात में रूस की हुकुमरान यूनाइटेड रशिया पार्टी ने सबकत हासिल की हुई है। पार्टी को तकरीबन 57.5% वोट मिले हैं। हतमी नतायज 25 सितंबर को आने का इम्कान है। यूनाइटेड रशिया पार्टी ने इससे पहले इंतखाबात में 324 सीटें जीती थीं। ये इंतखाबात यूक्रेन के साथ जारी लड़ाई के दरमियान हो रहे हैं और कीव की जानिब से रात भर का एक बड़ा ड्रोन हमला किया गया है। रूसी अहलकारों ने कहा है कि 1,900 से ज्यादा ड्रोन इस हमले में शामिल थे, जिसमें तकरीबन 2 अफराद की मौत हो गई और तेल की एक रिफाइनरी को नुकसान पहुंचा है। वैंकूवर में भारत के कौंसल जनरल ने तमिलनाडु और पुदुचेरी से ताल्लुक रखने वाले 2 भारतीय तलबा की अलमनाक मौत पर ताजियत का इजहार किया है। तरबती प्रवास के दौरान कनाडा में एक हादसे में इन दोनों तलबा की जान चली गई थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर कौंसल खाने ने कहा है कि मुश्किल की इस घड़ी में वो सोगवार कुनबों के साथ है। इत्तातुल शरियात की वजारत ने ये वजाहत की है कि केरलम के दस्तावेजी और मुख्तसर फिल्मों के 18वें बैनुल अक्वामी फिल्म फेस्टिवल में नुमाइश के लिए किसी भी फिल्म को इजाजत देने से इनकार नहीं किया गया है। कांग्रेस के लीडर शशि थरूर के इल्जाम के जवाब में वजारत ने कहा है कि 6 फिल्मों के लिए मजीद तफसीली सिनॉप्सिस फराहम करने की दरख्वास्त की गई है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर वजारत ने कहा कि फिल्मों के मौजू के एतबार से कुछ फिल्मों को जायजे के लिए मुख्तलिफ शोबों के हुकाम के पास भेजा गया है। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज अंडमान निकोबार जजायर, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में शदीद बारिश की पेशगोई की है। IMD के मुताबिक अगले 2 से 3 रोज के दौरान साहिली आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी इसी तरह का मौसम रहने का इम्कान है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान जंग के सिलसिले में फैसला कुन मरहले में है। उन्होंने खबरदार किया है कि बड़े वाकयात पेश आने वाले हैं। उनका यह बयान ऐसे वक्त सामने आया है जब ईरान ने कहा है कि उसने अपनाए हुरमुस को दोबारा खोलने के लिए अमरीका के सामने अपनी शरायत सालिसी करने वालों के जरिए पेश कर दी हैं। सदर ट्रंप का यह बयान ईरान के सदर मसूद पजेशकियान के न्यूयॉर्क के मुतवक्के दौरे से कबल सामने आए हैं, जहां वो अक्वामे मुत्तहदा की जनरल असेंबली के इजलास में शिरकत करेंगे। इम्कान है कि उनके हमराह एक आला सतह का वफ्द भी होगा। ईरान ने मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए कतर के जरिए अमरीका को अपनी 7 शराइत से आगाह कर दिया है, जिनका मकसद जारी लड़ाई को खत्म करना है। भारतीय बहरिया के 2 बहरी जहाज फिलीपींस में स्यूबिक खलीज में पहुंच गए हैं, जहां वो आसियान मुल्कों के वज़राए दिफा की मीटिंग और मुश्तरका तआवुन सरगर्मियों में हिस्सा लेंगे। एशियन गेम्स में जापान के नागोया में भारत ने मर्दों के 10 मीटर एयर राइफल टीम मुकाबले में चांदी का 3रा तमगा हासिल कर लिया है। भारतीय निशानेबाज हिमांशु ढिल्लों ने चांदी का, जबकि रुद्रांश पाटिल ने कांसे का तमगा जीता। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में सुचिका तरियाल ने खवातीन के 60 किलोग्राम रिवायती जुमरे के सेमीफाइनल में कांसे का तमगा जीता है। भारत अब तक 6 तमगे जीत चुका है। नौजवानों की उमूर और खेलों के मरकजी वजीर मनसुख पांडविया ने एशियन गेम्स में तमगे जीतने वाले खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश की है। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। भारत न्यूजीलैंड आजाद तजारती मुआहदे को कतई शक्ल दी जा चुकी है। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि 20 अक्टूबर से यह नाफिज हो जाएगा। मरकजी वजीर अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत की किताबुल अदविया को 25 मुल्कों में तस्लीम किया गया है, जिससे खुद की

0: सामान्य सुनर मेरे साथ ही आज का मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, पेशे खिदमत प्रोग्राम कहकशां। आज इस प्रोग्राम में सुनिए जुबैदा फिल्म की कहानी और नगमे, जिसे तरतीब दिया है तारिक हमीद ने।
1: फिल्म की शुरुआत एक जनाजे से होती है जिसमें एक छोटा सा मासूम बच्चा रेजू भी शिरकत करता है। कफन दफन के बाद वो अपनी नानी सुरेखा सिकरीनी से पूछता है कि वो क्यों रो रही है। वो बताती है कि एक परियों की शहजादी थी जो अपने रेजू बाबा को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। वो परियों की शहजादी कोई और नहीं, तुम्हारी माँ थी। मगर वो बच्चा ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि इसकी माँ मर गई है, इसलिए वो अपने दोस्तों से लड़ाई भी करता है। कहानी आगे बढ़ती है। इसकी आया इस बच्चे को बताती है कि वो इसकी दूसरी माँ थी जो उसे बहुत प्यार करती थी। इसका नाम था जुबैदा। जुबैदा के अब्बा उसकी मौत पर भी उसे माफ नहीं करते हैं, इसलिए वो इसे मिट्टी देने भी नहीं गए। वक्त बीता, रेजू यानी रियाज मसूद जवान होकर अपनी मां की एक झलक देखने के लिए बेताब हुआ। रियाज मसूद रजत कपूर इस फिल्म को तलाश करने लगा जिसमें उसकी मां जुबैदा ने काम किया था, और इसी फिल्म की वजह से जुबैदा के अब्बा सुलेमान सेठ अमरीश पुरी का बंबई में एक स्टूडियो था, और इस स्टूडियो में डांस मास्टर हीरालाल शक्ति कपूर से जुबैदा डांस सीखा करती थी और इसे डांस के लिए तैयार करती थी। मिसेज रोजी ललित दुबे वो कमजोरी थी सुलेमान सेठ की। जब सुलेमान सेठ ने अपना स्टूडियो नंदलाल सेठ को फरोख्त कर दिया तो सेठ ने जुबैदा को लेकर बंजारन लड़की पर एक फिल्म बनाई।

शूटिंग के दौरान ही सुलेमान सेठ वहां पहुंच जाता है और जुबैदा को पकड़ कर ले आता है। जिस फिल्म में जुबैदा ने काम किया था, इसी फिल्म की तलाश थी रियाज मसूद को। डांस सीन तैयार हो चुका था मगर वो फिल्म नहीं मिल रही थी। रियाज मसूद की अगली मुलाकात होती है मिसेज रोजी से। जुबैदा की आगे की जिंदगी पर रोशनी डालती हैं मिसेज रोजी। सुलेमान सेठ अपने दोस्त साजिद रशीद के बेटे महबूब आलम विनोद शरावत से जुबैदा की शादी तय कर देते हैं। जुबैदा इनकार करती है मगर बाप की जिद के आगे इसकी एक नहीं चलती। वो आजाद रहना चाहती है, अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी के बारे में सोचना चाहती है, मगर उसकी सोच पर, उसकी आजादी पर सुलेमान सेठ का पहरा लगा रहता है। उसकी नजर में प्यार मोहब्बत फिल्मी बातें हैं और इसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं। जुबैदा अपने बाप के आगे घुटने टेक देती है और उसकी शादी हो जाती है।

अपनी खुशियों और अपने जज्बात का गला घोट कर जुबैदा अपने आप को चार दीवारी में कैद कर लेती है। यहां पर कहानी ड्रामाई मोड़ में दाखिल होती है। साजिद रशीद अपने बेटे और बहू के साथ वापस कराची जाने का फैसला करते हैं। ये खबर सब पर बिजली की तरह गिरती है। सुलेमान सेठ अपना दबदबा बनाए रखने के लिए साजिद रशीद से फैसला वापस लेने को कहता है, मगर साजिद उनकी एक नहीं सुनता। बहस चलती रहती है। ये बहस तीखी नोकझोंक में तब्दील हो जाती है। ऐन उसी वक्त जुबैदा एक खूबसूरत बच्चे यानी रेजू को जन्म देती है। रेजू का आना भी साजिद को कराची जाने से नहीं रोक पाता है। नतीजा होता है जुबैदा की मुकम्मल आजादी, यानी महबूब आलम अपनी बीवी को तलाक दे देता है और कराची वापस चला जाता है। जुबैदा के जज्बात का ख्याल किसी को नहीं था। सुलेमान सेठ अपनी जिद और अना की खातिर पहले जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर करता है और बाद में तलाक के लिए। जुबैदा की जिंदगी खुलने से पहले ही मुरझाने लगी। खुशी की जगह उदासी जुबैदा की जिंदगी में हायल हो गई थी। सुलेमान सेठ की कमजोरी यानी मिसेज रोजी जुबैदा की जिंदगी में फिर से खुशियां भरने के लिए उसे अपने घर से बाहर निकालती है और सैर व तफरी का बहाना बनाकर पोलो का मैच देखने जाती है। पोलो का वो मैच जिसमें फतेहपुर के राजा विजेंद्र सिंह मनोज वाजपेयी हिस्सा लेते हैं। राजा विजेंद्र सिंह यानी विक्टर से जब जुबैदा की मुलाकात होती है तो वो जुबैदा की खूबसूरती पर इस कदर फिदा होता है कि फौरन इसे ताज में डिनर की दावत दे देता है। इस तरह दोनों की मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है और इस काम में बराबर की शरीक होती हैं मिसेज रोजी।

थोड़ी नोक झोंक, थोड़ी गलतफहमी, थोड़े तहाइफ के बाद जुबैदा और विक्टर एक साथ रहने का फैसला करते हैं। फयाजी बेगम यानी जुबैदा की मां उसकी मुखालफत करती है, मगर बेटी की खुशी की खातिर मजबूर हो जाती है। लेकिन उसकी एक शर्त थी कि रेजू उसके पास ही रहेगा। एक बार फिर जुबैदा हालात से समझौता करती है और विक्टर के साथ फतेहपुर के लिए रवाना हो जाती है। जुबैदा के लिए विक्टर तो सब कुछ था, इसे अपने आजाद होने का एहसास कभी भी इस तरह नहीं हुआ था जितना अब हो रहा था, जैसे इसके पर निकल आए हों। अगर विक्टर कहते कि अभी अभी कूद पड़ो तो वो बिला झिझक कूद पड़ती। वो समाज के बंधन को तोड़कर मोहब्बत के बंधन में बंध गई थी। विक्टर जुबैदा को मीनाक्षी देवी बनाकर फतेहपुर के राजमहल ले आता है। पूरी शान शौकत से उसका स्वागत होता है। राजमहल के दस्तूर के मुताबिक विक्टर की पहली बीवी रानी मंदिरा देवी रेखा से जुबैदा यानी मीनाक्षी देवी मिलने जाती है। मंदिरा इसे राजमहल की रीतो रिवाज तौर तरीके के बारे में बताती है। जुबैदा को ऐसा लगता है कि रानी बनकर रहने से इसे घुटन होने लगेगी, उसकी जिंदगी दूभर हो जाएगी। मंदिरा कहती है कि यही राजमहल का रिवाज है। जुबैदा को बहुत अटपटा लगता है। बाद में वो विक्टर के साथ सैर को निकल जाती है।

एक दिन विक्टर खूबसूरत सा कुंदन का हार खरीद कर लाता है। जुबैदा उसे देखकर बहुत खुश होती है, मगर थोड़ी देर में उसकी खुशी मायूसी में बदल जाती है, क्योंकि वो हार मंदिरार देवी के लिए था। जुबैदा नाराजगी का इजहार करती है, मगर विक्टर कहता है कि इससे भी ज्यादा अहम और खूबसूरत तोहफा है उसके लिए, और वो है उसकी मां और उसका अपना बेटा रियाज। फैयाजी बेगम बेटी से मिलने के लिए अपने शौहर से झूठ बोलकर फतेहपुर आती है। दूसरी तरफ अपनी मां के बारे में पता करने रियाज मसूद फतेहपुर पहुंचता है। जब वो होटल पहुंचकर छोटी महारानी मीनाक्षी देवी के बारे में जानना चाहता है, तो इसे बड़ी हैरत होती है कि कोई उसका नाम भी नहीं लेना चाहता है। बहरहाल वो राजमाता मिंद्रा देवी से मिलने राजमहल जाता है। जुबैदा की बाकी की जिंदगी पर रोशनी डालती है मंदिरा देवी। पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। वो बताती है कि शुरू में इसे भी लगा था कि जुबैदा ने उसका सुहाग लूटा, मगर जैसे जैसे वक्त बदला वो भी बदली। उसके जख्म को भरने में पूरे 25 साल लग गए। कहानी फिर फ्लैश बैक में जाती है। घुंघरू पूजा की रस्म में जुबैदा की शिरकत होती है।

0: इस पूजा में जुबैदा तो शरीक होती है मगर अपने ढंग से, गीत के दौरान नाचना शुरू कर देती है जो किसी महारानी की शान के खिलाफ है। मंदिरा देवी इसे मना करती है और राजमहल के अपने कायदे और दस्तूर का हवाला देती है जिसे न तो तोड़ा जा सकता है और न ही नजरअंदाज किया जा सकता है। जुबैदा को ऐसा महसूस होता है कि उसकी जिंदगी राजमहल की इन चार दीवारियों में कैद होकर रह गई है, उसकी आजादी छिन गई है, जबकि वो आजाद रहना चाहती है, सारी रस्मों को तोड़कर वो जीना चाहती है। वो नाराज होकर चली आती है। विक्टर इसे मनाता है और उसे वो कोठी उसके नाम कर देता है जिसमें जुबैदा रह रही होती है। जुबैदा की जिंदगी में परेशानी का सबब बनता है विक्टर का रंगीन मिजाज, छोटा भाई राजा उदय सिंह, राहुल महारिया। कदम कदम पर वो जुबैदा को परेशान करता है, उसके साथ छेड़छाड़ करता है। हालात बदलते हैं, मुल्क की सियासी हालत में तब्दीली होती है, भारत आजाद होता है, राजा विजेंद्र सिंह हिंदुस्तानी सियासत का हिस्सा बनते हैं और इलेक्शन में शामिल होते हैं। इलेक्शन में विक्टरी यानी राजा विजेंद्र सिंह को कामयाबी मिलती है और सियासी जोड़ तोड़ के सिलसिले में उसके दिल्ली आने का प्रोग्राम बनता है और अपने साथ मंदिरा देवी को लेकर जाना चाहता है। उधर इलेक्शन की वजह से विक्टर का ज्यादातर वक्त मंदिरा देवी के साथ गुजरता है और इधर जुबैदा अपने आप को अकेला महसूस करने लगती है, लिहाजा वो जिद करती है कि इस बार विक्टर के साथ वो खुद जाएगी। इसकी जिद के आगे किसी की नहीं चलती है। जुबैदा विक्टर के साथ दिल्ली के लिए रवाना होती है कि थोड़ी ही देर बाद उसका प्लेन क्रैश कर जाता है। रियाज मसूद को आखिरी में राजमाता मंदिरा देवी की तरफ से एक लिफाफा मौसूल होता है जिसमें जुबैदा की लिखी एक डायरी और वो चीज मिल जाती है जिसकी इसे तलाश थी, यानी वो बंजारन लड़की की फिल्म जिसमें जुबैदा ने काम किया था।
1: Let me hold.

समझ में आप कहकशा प्रोग्राम के तहत सुन रहे थे जुबैदा फिल्म की कहानी और नगमे जिसे तरतीब दिया था जनाब तारिक हामिद ने, पेश कर रहे थे शमीम कुरैशी। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, पेश खिदमत फिल्मी नगमे।

0: Sergeant? वो यहीं पर।
1: यहीं?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

अनुपमा फिल्म का नाम आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर की आवाज में, नगमा निगार थी कैफी आजमी, मौसीकार हेमंत कुमार, और शामिल ये सुनिए मुकेश की आवाज में साथी फिल्म का नगमा, नगमा निगार मजरू, मौसीकार नौशाद।

अनि इमर्जेन्सी चाहिँ हामी मिसन मोटिकर सुल जन दे पिङ त निपुण भारत मिसन आउँछन् कि दि स्टेज पिङ त मिसन मोटिङ त असुल भइस दु चे जमेन प्रुन दो च प्रु पिसेल उसिन द स्किल्स पुखवा दे पर्टिकुलर स्टेज पिङ लोस पिनु मालोस पन खोइ पुरा जिन्दगी दे डिपेंड छिनु दोस बसे खौ पुरा आने वाले लाइफ खोइ खराब छिनु चाना अब हामी मिसन मोड पे ये चलाना है इसीलिए निपुण भारत मिसन जन कि निपुण भारत मिसन

0: 11 12 sapek chana khwe basic choice subject chanu khwel dan chin ju kuri interest basic chana the interest basic ka kuri choice pol len kan po kho further kwa sa de chiz penu kwa last bas ni onchin chuk sisi onchin chuk further kwa de knowledge gain ba kwa interest onchin chuk do so chi do en ju ki kho open choice ta cha free ngata maximum academy anu ko plus kuch degree ba sina khola chang skill chik ngati Indian education system pa pass system pa skill chik myo ma de mana chani phd ba jaksin chu chana nan kala sa ti kho choice start cha chin 11 12 sapek chana khwe basic choice subject chanu khwel dan chin chu kuri interest basic chana the interest basic ka kuri choice pol len kan po kho further kwa sa de chiz pe anu kwa last bas ni onchin chuk sisi onchin chuk further kwa de knowledge gain ba kwa interest onchin chuk do so chi do en chuk ki kho open choice ta cha free ngata maximum academy anu ko plus kuch degree ba sina khola chang skill chik ngati Indian education system pa pass system pa skill chik myo ma de mana chani phd ba sina yang ara ngari chi chik den di ba chik cho chik klashi de chik mana hunar chi met skill chi develop chamet tin mashana da san do ngata chachuk pi phyazin chi ki ngata shua 6 class ikana fan la skill exposure tum आगे जाके 12th का फर्दर कोर्स के लिए एक्सपोजर दूं ताकि वो 12th के बाद कुछ काम कर सके फिर इसके बाद वो ग्रेजुएशन करेगा टाइम मिलता है वो ग्रेजुएशन करेगा फिर कुछ काम भी करेगा छोड़ के फिर से वो पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं चाहे एक लाइफ लॉन्ग लर्नर दो चौशी विजन ही का बता दी चीज सुन ध्यान सेटअप पे या सिंस
1: विलायत साहब तो दिया उन्होंने बता दे स्किल डेवलपमेंट वोकेशनल एजुकेशन का दोनों प्रैक्टिकल लर्निंग का ngatang su da ha new education policy no chana di approach pos ngati phd bas nang nga yang la shi ngare bog zena ring la skill met chana di gap ga chola cause kam ba chain jo
0: ngata skill based education no chikpa na ngata bahut sare kaam ifi ngata eligible che chin khud ka kar sakte ya khud chota mota business ek startup che start bana ngata ek degree ke sath sath ngati na skill che ngata lob se ho chin जैसे कि माता जैसिन दी एजुकेशन पॉलिसी जैसिन की 10th पास होते होते बच्चे के अंदर एक पर्टिकुलर हार्ड स्किल्स उसके अंदर होना चाहिए जैसे कि 10वीं पास उसी को माना जाएगा कारपेंट्री करना आता हो इलेक्ट्रिशियन का काम थोड़ा बहुत आता हो या वो टूरिज्म से रिलेटेड कुछ या करना गार्डनिंग से रिलेटेड कुछ करना आता हो अगर वो करना आता हो तो ही उसका 10th पास माना जाएगा फिर 12th में कुछ स्किल का चिंगा था फर्दर ध्यान था जिन दिस स्किल दिस रिलेटेड कोई वोकेशनल स्किल से उसके बगैर ना स्किल बेस्ड एजुकेशन से बना था पहला प्रैक्टिकल एजुकेशन कंपिटेंसी फ्री डेवलप छा रट्टाफिकेशन आना बाहरों से माता कुछ कंक्रीट कंपिटेंसी बच्चे डेवलप
1: छा
0: प्रैक्टिकल खो लोप छुचा एक्सपीरियंस बेसिक खुआ लर्निंग छा चुचा सबक पुजर इन दे कंसेप्ट पूछू तो ना दे कंसेप्ट भी एप्लीकेशन पे का फोकस ना चा मैक्सिमम आता ट्रेडिशनल सेटअप पे अनु टॉपिक चिंग याद बचा दो से रिलेटेड क्वेश्चन पो बेसिक आंसर चीज से दो याद बस ना एग्जाम आंसर चा एग्जाम भी सी ना पास हो सकती ना यहाँ दे बारे आता एक दो साल के अंदर अंदर या मन आता एक महीने के अंदर अंदर गांव मार जीते छाना दो छाना दे सवाल पुआता रोट मेमोराइजेशन रोट लर्निंग रोड लर्निंग बाहर क्यों फूल ला कंपिटेंसी बेस्ड एजुकेशन तीन क्यों में पिया खुआ प्रैक्टिकली खुआ सवाल पे कॉन्सेप्ट छूते ना दे एप्लीकेशन पो दे लैब पे एप्लीकेशन पो बचा सब पे खोज हो जा दो सब जा सो और दे सब पे चाहे मीन्स की खुए अंदर एक एटीट्यूड डेवलप बचा एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप बचा ताकि खुआ दे चीज पो पता है कि ना बाइन मत बाइन का ना बचा खुरेस बचा
1: प्रैक्टिकली
0: बचा गंदगी मम्बोज जाएगा गंदगी माहौल खराब होता है स्कूल या साइंस या सब जा माहौल खराब होता है छात प्लास्टिक छात गंदगी पाना वाटर पोल्यूशन एयर पोल्यूशन दोनों गाँव में छात जा दे कंसेप्ट को पहला चीची आना माना तो छुत पर जाचुआ रट्टा तान से एग्जाम बिचिन चिच्चे खो दे कंसेप्ट को छुचिन छूते ना खोस खुरेस भजन खुरी लाइफ पे आने या चाहे छोटा मोटा ची बना क्लासरूम में बना क्लासरूम से बाहर बना खामा बना खोस बचिन एक बार बचिन बाइंचिन से ऊपर मीन्स खोस प्रैक्टिकली खोए अंदर एटीट्यूड ची डेवलप छचिन की खोस गंदगी बचा में यहां चीज बना खोस दुआ प्रैक्टिकल एजुकेशन हार्ड स्किल वोकेशनल स्किल्स फूल लेता ताकि खो खुरी रोजगार कमाए भी कुछ डिग्री बसना को कमाए बा जरेक छेद को कमाए बा नियन को इंडिपेंडेंट कमाए बा खंची छेद को खुरी पेरेंट्स को डिपेंड मिले
1: डॉक्टर साहब तदियन उगदे गा पॉलिसी

0: fa malaw gas scheme chi katho shuru bana government is implication po ha mis qualab chu cha critical period change chana ngati the new education policy implement be vietnam je challenge jo khas kar ngati di area to ladakh to jaga ne anok you lev chu pa dianuk challenge tam chyo dona department is the challenge po overcome be phega chuk la jibe
1: ana ji policy chu na de policy monar de mek choli paper am monar de mek
2: chok chui ka mar de bo
1: lekin to jab ground level ka level level sik dang kafi gap ma da create chin tam se policy chu na de na chos dang ata national education policy monar de mo document ya ab do ground level ka level level sing ata man bo sare loop hole chon chin dadai context ana nang ata ga policy chona ngata national level ke chona ngata ngati remote area no lada remote area no implementation be pia yang nay nay challenge ka tong ngata yang absorption ya chana ngata for example ngata main main katalta ngata policy time ka awareness ngata thopenu chai di policy should be pia sirip ngata minda chiknis la administrator chiknis la pata ho chik ya sirip teacher chiknis la ya academician chiknis la pata ho chik sapik chamen di policy ngata administrator ing ta ngspa ngata stakeholder ga ma parents sak teachers sak school sak private school government school government remote area school har miya din pata ho mar do pata son se chi bachin jere practically khwa chut par gos chut me ne khwa de las ba men chana ngata ho de awareness chut pi de practically har area stakeholder gang ma de anuk involve so de policy chut pi don chut chon time bon chang ngata chut par gos das sangata nipun bharat mission एक मिशन मोड पे चला रहा है 21 में स्टार्ट हो गया 27 तक खत्म हो गया अब 21 से 27 चाना दसान दीजिए 26 एक साल में मालूस चाना गाता बहुत सारे चीज गेप गाता आलूस खची मैंने पता में दूगा चो चीबा चिंदर चो इंच चिंदर चो मेन स्टेक होल्डर का चाना गाता चैलेंज छेनु की अवेयर छेनु को अंडरस्टैंडिंग छेनु निस्पो गाता फाइनेंशियल इश्यू चिंद सुपो गाता गाँव सानु पेरेंट्स लेवल की अवेयरनेस बचा या स्कूली इंफ्रास्ट्रक्चर उससे रिलेटेड उस लेवल पे लाना दे लेवल पे टीचर की कैपेसिटी डेवलप जो चाह ह्यूमन रिसोर्स डेवलप जो चाह छाना पॉलिसी अनुमान अर्धे मर्दे मतलब वोकेशनल एजुकेशन सब्जेक्ट खाची जॉक बच्चों को चॉइस देना चाहिए अब उस चॉइस के हिसाब से फैकल्टीज होना चाहिए टीचर होना चाहिए बाकी कंटेंट को अवेलेबल हो रिसोर्स अवेलेबल हो दोन गाँव आता अवेलेबल हो देफियांग आता मेन इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आता डिजिटल इनिशिएटिव दिया कि हर रिसोर्स डिजिटल फॉर्म में अनु डेवलप अवेलेबल बस जैसे कि रिमोट स्कूल से अनुता स्मार्ट क्लासेस स्मार्ट बोर्ड से दयानुक दे लिंक शेयर बसे दीक्षा जरे फॉर एग्जाम्पल टीचर इफ या दीक्षा एप एप पे अनुख टाइम टाइम का अपडेट ता टाइम टाइम ओरियंटेशन ता ताकि सब जगह जेजर में टाइम टाइमिंग डिजिटल के थ्रू भी रिसोर्स प्रोवाइड करने की कोशिश बनी रिमोट रीजन नॉट रिचेबल एरिया क्वालिटी रिसोर्स डिजिटल मीन्स का प्रोवाइड बनी छाना दो प्रोवाइड बना दो चल गैप फील बनी लेकिन फिर भी इम्प्लीमेंट बखानून खासकर स्कूल लेवल का या इंस्टीट्यूशनल लेवल का इम्प्लीमेंट बखानूनी माइंड सेट में चेंज छो मैंने एक्सपेक्शन हुआ था जैसे कि पुराना माइंड सेट में आना अब एक नए माइंड सेट में आना लर्निंग एटीट्यूड अनलर्न रीलर्न करना दे एटीट्यूड टू डेवलप छोचा पुराना सिस्टम पे कम्फर्ट को दुख दुख अब नए सिस्टम पे आता यूं मुश्किल से दुख अब वो मोटिवेशन
0: और बहुत कुछ करना
1: पड़ता कम मेहनत बार कुछ अब थोड़ा और ज्यादा मेहनत करना चाहिए अब कुछ ऐसे भी सोच सकता है कि भाई ऑलरेडी हमें फैसिलिटीज तो है अब क्यों मेहनत ज्यादा
0: करना है
1: किचाना दे माइंड सेट उन चेंज बचा तो सा या स्ट्रीम लाइन बचा हुआ था मैं चैलेंज दुख पाई दिन
0: छे भी वलायत साहब गता प्रोग्राम में वक्स पाऊं हां आखिर ला लेब जो छाना यदि कर दियो नस्ती तक की मतलब ब्रॉडर वर्जन मतलब अगर पूरे हिंदुस्तानी लेवल का कदलता न रिक दी न्यू एजुकेशन पॉलिसी एजुकेशन सिस्टम पो गलत से खेल रहे न्यू एजुकेशन पॉलिसीज और गचुगा पेरेंट्स चिगेस टीचर्स चिगेस हाँ यह मैंना स्टूडेंट कम्युनिटी खोरेस दोनों गवर्नमेंट इस दी एजुकेशन पॉलिसी कामयाब बेफिया गचू का मदद बन जाएंगे
1: छा मेन ब्रॉडर विजन पर दिया दुखा था आती दी एजुकेशन पॉलिसी नेशनल लेवल का मकसद पर दिया जो कि स्किल्ड कंपैशनेट ह्यूमन बींग चिक आती सोसाइटी डेवलप छा and kiss Joe.

0: वो एक स्किल हो, कुछ काम करने की क्षमता, एक
1: क्वालिटी
0: स्किल,
1: हो।
0: क्वालिटी भी हो, स्किल भी हो, कर सकता हो, और वो कंपैशनेट हो. कंपैशनेट मीन्स होता जो खुद के लिए अच्छा सोचता हो, दूसरों के लिए
1: सोसाइटी के
0: अच्छा
1: लिए,
0: सोचता हो, सोसाइटी के लिए अच्छा सोचता हो, अच्छा सोच रखने वाला, एक केयरिंग एटीट्यूड वाला इंसान पैदा करना है जो कंट्री के लिए फायदा हो, देश के लिए फायदा हो, और इंडियननेस के अंदर यूं दो सौ ह्यूमन चिंगाता सोसाइटियां पैदा बचो जो इंडिया पाजरे इंडियन की करो प्राउड फील करता
1: मतंग
0: हो,
1: भी देना
0: मातंग
1: क्वालिटी
0: जरे
1: ह्यूमन चाहो
0: मती
1: मैं।
0: इंडिया मातंग देश भारत जरे दे प्राउड फील बचा जो बहुत ही कंपेशनेट केयर वाला इंसान हो और जो जिसके अंदर कुछ स्किल हो वो
1: जज्बात भी हो
0: जज्बा
1: उसमें।
0: हो करने का वो करता हो और देश के लिए सोसाइटी के लिए खुद के लिए डेवलपमेंट के लिए वो कंट्रीब्यूट करता हो, एक कंट्रीब्यूटिंग ह्यूमन पर्सन हो और लाइफ लॉन्ग लर्नर हो. लाइफ लॉन्ग लर्नर इस हमेशा वो सीखने की
1: सीखने की
0: एटीट्यूड
1: कोशिश
0: उसके
1: करता
0: अंदर
1: रहता
0: हो
1: हूँ।
0: और सीखते रहने वाला उस तरह का इंसान आती सोसाइटी में पैदा भी दी विजन पो दी पॉलिसी दो यमो यमो आता आती रोल छाना हर पेरेंट्स इन ना टीचर इन ना मेन रोल इन दी पॉलिसी आती ग्राउंड लेवल का क्यों में पिया छाना सारे रोल पो ची बचे चाहो गचुक सपोर्ट चिक या सुई रोल हो जिन प्रैक्टिकली कंट्रीब्यूट बचा
1: कंट्रीब्यूट
0: रिसोर्स पैदा बचा रिसोर्स सपोर्ट बचा सुई रोल हो चाहे एज ए पेरेंट्स वो अपने बच्चों को सपोर्ट करे सोसाइटी को सपोर्ट करे स्कूल को सपोर्ट करे हर कोई अपना एक्टिव रोल इस कंटेक्स में समझ के खोज दे रोल पो का तो बना माता कामयाब तरीके से माता दिचो सोसाइटी फ्यूचर है माता निश्चित.
1: डॉक्टर साहब यदि उजु सरी मो कि गति मेमांग सुन ला गति तखान उन ला न्यू एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट दी 2020 यंग शुरू बस पिति पॉलिसी स्कोर ला सल्पो बसेरेस गति मेमांग सुन जस दु चेक हक्चन इन चीफ या इन जर चाओ चा शुरू बस पिन जर चाओ क्लासरूम ही कना हिंदुस्तान इकोनॉमी हूँ गति प्राइम मिनिस्टर स्लोगन जी टाक्स 2047 सुपंगतांग विकसित भारत चोचिंदरे
0: एग्जैक्टली दो
1: दे
0: मत
1: नुक दे गोल पे नुक ngati de classroom et kan ipsun is gacho contribute bachin this system po pura gachu gal danchin di education policies gacho madad bachin zer bi di yeres di speron ngati me mansu pa lep chuche ka yara uju seri moju inshallah me mansun yom me ja hona yang ngate soma scheme chi government di khure di seva sankalp abhiyan tahat yantang supa yang tutuk de man ngacha jaza chazdebo ja ju khoda nar sahmane faqran

0: डॉक्टर साहब पेशेंट्स फिस फॉर प्रोग्राम चिंगे ने उत्पन्न सेवा ही संकल्प प्रोग्राम फॉर चुखन पे इनमिन इनायत अली मीडिया में त्रुग्या नंग इशुज बिनेज भी किलो हर्ट्स मीडिया में स्टोंची नंग अब गया नंग इशुज बिनेज भी किलो हर्ट्स दुना गाची मोबाइल एप न्यूज ऑन अमेरिका गाचेस आकाशवाणी करगिली का नाजरी न्यूट वक्सपू तुसुत अगासोंसुक दिरिंग जगपू चंद्राल सितंबर इलसिंग इशुर सख्शिक दिरिंग फ्रचुपायत पी प्रोग्राम उन जिबेस लाखुरे नचायांग यंती दोनों क्लिप से युत नची जुने सलाम पु फ्रतमोचन सोंशिक सखबचिक नला दुआया प्रोग्राम सदाकत लागु जुगबित दि प्रोग्राम इ रक्से कंगन मजत सखम कुरानी तिलावत न तर्जुमाला मुल्कन पे इन शेख मोहम्मद ईसा हाफिजी
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: से जानेंगे कि भाई नाश्ता जब हम स्किप करते हैं तो उससे क्या हानि होती है और यदि हम करते हैं तो उसके क्या क्या लाभ हैं। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में।
1: नाश्ता इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम देखें तो जो हमारी दिनचर्या होती है उसमें रात में खाने के बाद हम लोग सो जाते हैं और उसके बाद फिर बहुत एक लंबा समय होता है जिस समय हमारा शरीर कुछ भी हमारे शरीर में नहीं आता है खाने पीने के लिए। तो अगर हम सुबह उठ के नाश्ता नहीं करेंगे, जल्दी से जल्दी नाश्ता करना चाहिए, नाश्ता अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे जो शरीर की जो मेटाबॉलिज्म है जिसको चपाचपे जो प्रक्रिया होती है वो खराब हो जाती है और उससे क्या होता है जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है जो हमारे शरीर में एक जैविक घड़ी होती है वो बिगड़ने लगती है। शरीर को गलत मैसेज जाता है, शरीर में वसा इकट्ठा होने लगता है, चर्बी बढ़ने लगती है, वीकनेस आने की संभावना हो जाती है क्योंकि जो अर्ली न्यूट्रिएंट्स जितनी जल्दी हम सुबह सुबह जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं वो हमारे पूरे दिन की दिनचर्या को सही रखता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर अच्छी तरह से आप नाश्ता कर लेते हैं तो अगर एक बार दोपहर में स्किप भी हो जाता है, कुछ आप नहीं भी खाते हैं तो भी कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर नाश्ता नहीं करेंगे तो चूंकि रात भर की फास्टिंग होती है, रात भर खाली पेट रहते हैं और पूरा शरीर हमारा सुबह सुबह तैयार रहता है उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए, जो कि बिल्कुल नया सुबह होने का मतलब शरीर हमारे नए तरीके से स्टार्ट होता है। तो इसलिए अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट जरूर करना चाहिए और कई बार लोग ब्रेकफास्ट को बहुत लेट कर देते हैं, वो लगभग लगभग दोपहर के भोजन के समय 11 बजे खा रहे हैं, ऐसा नहीं। ब्रेकफास्ट जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी करना चाहिए, वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। अक्सर लोग समझते हैं कि ब्रेकफास्ट छोड़ देने से वेट कम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं। ब्रेकफास्ट करने से वेट मैनेजमेंट में आसानी होती है क्योंकि ब्रेकफास्ट न करने से वजन बढ़ता है। अगर हम बहुत देर तक खाना नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर इस हिसाब से अपने आप को तैयार करने लगता है कि हो सकता है भविष्य में भोजन न मिले, तो वो अधिक से अधिक वसा अपने अंदर इकट्ठा करना शुरू कर देता है। तो अगर वजन कम करना है उसके लिए भी आवश्यक है कि ब्रेकफास्ट किया जाए और जिन लोगों को वजन बढ़ाना है उनके लिए भी आवश्यक है कि सुबह ब्रेकफास्ट किया जाए।
0: आमतौर पर नाश्ते में क्या क्या लिया जाए सामान्यतया?
1: हाँ, नाश्ते में सबसे अच्छा तो होता है कि जो हम प्राकृतिक आहार लें, प्राकृतिक आहार का मतलब कम से कम जिसमें हम एडल्ट्रेशन कर सकते हैं और अंकुरित जो अनाज होते हैं वो ले सकते हैं। और अगर मान लीजिए हमारा पाचन जो तंत्र है या तमाम लोग ऐसे हैं तो जो ये सब चीजें नहीं खा सकते हैं, तो उनको भी ऐसी चीजें लेनी चाहिए जो आसानी से पच जाएं, जैसे दलिया ले सकते हैं, खिचड़ी ले सकते हैं। और कोशिश करनी चाहिए कि मैदे से बनी चीजें नहीं लेनी चाहिए। अक्सर लोग ब्रेड खाते हैं तो ठीक है, लेकिन ब्रेड के बजाय कोशिश करनी चाहिए कि मैदे से बनी, चूंकि ब्रेड मैदे से ही बनती है, तो ऐसी चीजें जो रिफाइंड ना हो, प्राकृतिक रूप में हमारे पास हो, हाँ वो हमें लेना चाहिए। प्राकृतिक आहार हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, फल हैं, अंकुरित करके हम अनाज को खा सकते हैं, मूंग है, चना है, दलिया है और मूंगफली है, सोयाबीन है, तो इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं जो हम खा सकते हैं। तो नाश्ते में कोशिश करनी चाहिए कि जो प्राकृतिक आहार है, नेचुरल जो चीजें हैं वही लेनी चाहिए।
0: जी जी। तो दोस्तों ये थे डॉक्टर अंबु शुक्ला और डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि भाई नाश्ता क्यों जरूरी है और यदि हम नहीं करते हैं तो क्या नुकसान होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप डॉक्टर साहब की बातों को आत्मसात करेंगे और इससे लाभ लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।
2: तो दोस्तों अभी आप सुन रहे थे हेल्थ से जुड़ी समस्याओं से जुड़ा ये कार्यक्रम।
3: میڈیا میں جس آکاشوانی کرگل کن زینو ٹاکس پہ تو سوت گانا منٹ سمچو ناگا سنسک کستا پروگرام ین مزید شیربا نچنگنی فیا پروگرام فرچکن پہ ان اصغر علی پروگرام پروڈیوسر گلزار حسین۔
4: السلام علیکم جولے آکاشوانی کرگل کن شیربا نچنگنی پروگرام پوجو بیز لگو رہے nga asghar ali yang rasich gantana skatto ni juna salam pu from chan sonshik rdhama jagat programs na bin jugzut khan sarma sun se kakafono ache nomu saknan met san medem bo jugzuktuk didin si sharba nachuni program pianuk sakbat se ksnalla international day of peace yani ngati michenuk aman snin khums lushas pozam che khajanin di mingna فیسبہ شک چک ملا کیوں مت سک میو لے تو گے کا دس کو لائن دانس پاس پیرا لے لب چوچا ینگ دیر کی اپنا الزائمر زیربت پی نا تیس کو لا زشان حیدر اکنا اندان سک پا سپیرا رگان لب چک پی فرالوکس بچا یونی دیرین سی پروگرام پولا گا تیس گوزو بیت پیس یعنی نا تیس کا تکا سنین کھمس یا اردی گا تیس آمن زرے مین تاکس تاکسے ہوتاں نام سنگ گتا پیس یعنی آمن نی آگر گتا سمبائی ہونا کتوک گتس اکثر دولا آمن زرت دولا سنگ کھم چند زرت گا جگہ نک چنگ شور شرابا میتنگ گا جگہ نک دواغی भूमि दुना।

0: amal buk nga char di hamayot nispara mana mamik sung nispara de ke jaxse yandang sakpa sarikana tresu klep chuget yentes tresu langen mazat
1: asghar ali khalu sab assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam
1: sagwaz sala ra uju sari mo rin toshan waxuna na waxs pin se yaran digas kyot ju chana mata dirin khachan jak chin ju asnal lang zarsang ki ata international day of zero waste ru ya din se fesba jak bu dehanu ngata chinget gen sam chi gates chalak use ba da ju ya sam chi ata chalak kol ba da ti mitse ru ga ti zindagi ru du ngates ngata sam chi zarurat da ju ya misal ko tar par yara chalak chi yari mitse ru sam chi gara yu sam chi gara kol ba zarurat da ga tu dej sa yara skol cha दुवचन थोजे मिसाल गद मगत जसे मिजु की इंसानी लालिश पुगता हा कभी गता दनु पुरा जसमेन खतम जसमेन मिजर होतो जु चला गतस गति लालिश पुगता शु कंट्रोल बसे दुर गते जाया छचु छा मिसाजु जा गा चलक चगत स्कूल लगतो दुन जाया बाबा दुनी कना वेस्ट मबिंग जु पा हजु की सक्सोक मसे जु पा दुन गता कोलचा उमर खसन जु चला एरी गना गतस सक्स पहिला दो दो ते पकी गता शर्माना चुन मेतो जु शर्माना चुन लगतस बैकबोन ऑफ द सोसाइटी जसस जु की यु मत पिगता फ्यूचर इन यु मत पिगता गा छोगो छोगो दान जरना का तो या मिसाल पॉलिटिक्स लाइन है नुक या एजुकेशन लाइन है यो रिसर्च लाइन है नुक गा लाइन जन ना का तो गता यू मत भी दक्षिण जी शर्बना चुन कल को मिसाल का तो यू मत भी नाम जाना गता दुन टॉप टॉप ना था लिटिल दान जैसे जो चला शर्बना चुनी का गजुक खाक दो जून गता कम बे खास कर गता गंदगी स्पर था सरसो स्पर कम बचा यंग दुना जलागुन जितना रिसोर्स जो जू दुन गता सिर्फ गते सब जगह था जरूर देना तो दूध सही होगा बख्शी
2: बख्शी जो अजगर साहब सबसे पहले अगर ऑल इंडिया रिड कारगिल बहुत शुक्रिया वे दुनिया रा शुक्रिया जरूरत की यार ऐसे दी प्लेटफॉर्म पे कहाँ दी इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेज जर भी दी जब पे करेंगे हाँगो तामा फुर्सत चिक मींस बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले ना अगर गति खास कर यूथ उल्ला या गति स्टूडेंट उल्ला गिरिंग सी इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट स्कोला स्पेरा खचिक जर जो सबसे पहला ना गता दू मोज की यरेस मोज की दिन ब दिन गति यूनु नैनु गति यस्कृत नैनु यानी दी सरसोक सब की गते वे जर तंजु गाना मी फन मी चीज तंजु दू दिन ब दिन यूं मी फ्यूचर ने संबत अंग में जुआ इस वजह से चीज है जो गता दिन ब दिन गी सरसोक सब वे सा गति खरखोर लाइन या गति सोसाइटी इन गति पूरा गति पूरा वर्ल्ड लेवल के आना जरना दून बड़ी चेंज हो जाए सबसे इम्पोर्टेंट इंसान इफे दखसा अगर क्रिटिकल इशू सबसे मतलब मुहिम इशू का तो याना का तो जरना वर्ल्ड लेवल का ये वेस्ट एनजीओ क्योंकि यार डाटे एक तांस दे जो सर कि 50 लाख क्विंटल मिलियन वेस्ट हर साल की दुनिया पे का जनरेट का तो छाड़ना संभव तो यार जंग 20-30 साल इंसान को गाता इंसान ली दुनिया पे का जिंदगी बा बहुत मुश्किल छा छा जिन छाना जोर गाता दियो मोज गाती यू तु नैनो कि चिंग एन एन गाते अल्टरनेट अल्टरनेट याना जर चिंग की गाते यंग लम चिक गाते चलचा जो कि जिससे गाता वेस्ट काम जा खास तौर पे गाता प्लास्टिक वेस्ट मना खतरनाक गाता सीरियस वेस्ट इवन की गाती लद्दाख ता गाता जिसो जगह जो कि गाता गाती सकेत पी के मैंने गाता डिपेंड में जो छाना गाती लद्दाख सो दखसा दिन ब दिन गति लद्दाख नो वेस्ट मना खिमोथ मचे असगर साहब या क्योंकि उससे पहले हमारे लद्दाख की क्लाइमेटिक कंडीशन पुना दरिस क्लाइमेटिक कंडीशन है आसमान जमीन फरक सु फरक यूं मचे जो दू फरक पुचे थो सी दू नि के यू तुनिस संबा ताना ठीक बसे ताना इंशाल्लाह गता यूं भी फ्यूचर गता गति दी वेस्ट पुता कंबा कम छाछा जिन पाया क्योंकि गता यूं भी फ्यूचर गता बची बार गोस की गति माहौल पुका छ साहब जक चिन जस कसा बख्शिश
1: बख्शिश जो छना यूथ नि का गता दस ने स्मॉल सन की गतन दस एग्रीकल्चर गता ट्रिंकल जो सगे दे गता ट्रिंकल छना दून कम बचसपो या दी गति सरसो कम बचसपो गति शर्बन चुनि का माने खक्षन जु यूं ता गता दसन पूरा ब्यूलित होएगा फेस संगत सरकारी स्पराताना एडमिनिस्ट्रेशन इस पेरा था गवर्नमेंट निकाना गजु गजु गता इनिशिएटिव रिक हाजु गजु गुम्बारिक लेन मचेनत गवस बसे गता दी सक्सो कम छ बसिस
2: क्योंकि देखो सर गवर्नमेंट का तो बहुत सारी स्कीम है सबसे बेस्ट स्कीम पुनियारा दिया दियो कि एक तीन गता मेथड चीजू थ्री आर जर रिड्यूस रियूज रिसाइकल दी मेथड पो अप्लाई बस गवर्नमेंट इस चाहे यार इंस्टीट्यूट लेवल इन स्कूल लेवल कहें यार मेडिकल हॉस्पिटल सोचाना तो गाँव लेवल के लेकिन अब मांग आती यू तु नैनो खास पर दी कॉन्सेप्ट पो दी सोच पो मिंदुक कि गरेज दी प्लास्टिक की पी बोतल पो या प्लास्टिक की बैग पो अगर गरेज खेरे डस्टबिन चेताना ngates implementation ba mamindu bujua kyunki isili kyunki ngata government is facility ta sun ngata dasbin jakso ngata mc department yo jua kon is acha khasa manage bet tab bi ngati kharkhon la ngati yorba sang ngati chamir sa sang no ya ngati bag sang no duniya bar ke plastic bottle bottle sangata thung ma che joja ma sang phang sangata thung ma che tu chi son sin jana kyunki du ngates thik bas government is keeping ngata module bin agar har student har fardis agar the waste khas taur par plastic bottle in ya plastic se related wala ga chuk sak sak ka to inna agar dun thik bas se khuri jagah ka jama bas se dustbin eta na mata itna dikkat chacha min jua lekin dustbin hone ke bawajood aapko matlab mata nali samay yurba samay sakya te mata plastic ki bottle sab thum machet du chi so sin implementation machain to isi le ngati youth ul khas taur pe education se book se related bhi hoche mein azgar sahab kyunki ngata education po implement bar question ngata iman de jo safai imani ada hissa in jua jis insaan eno common sense civic sense mein ki ko pata chamet ki bottle pugar ta chin gar nahi us pin di bane kho agar samjik di youth pen kato men na main samajhta hu ki future in ngati youth la kafi ngata sa ngata kafi mushkil cha chin jua ka sabak shis
1: bosi jo chana yang mm bo ngata government chok na jese ngata swaj bharat abhiyan ngati indian government taraf na ta initiative dik ya muhim dik ngata australia nu chu yang mbo mbo ngates agar di khas kar air pollution is par ngata na ju ngati hlungpo artsak sok chachi main stroll chi ngati gadi nu chu gadi nu ngata yani not kitchen tut parikata bin jasin zuk khas kar ngates carbon monoxide za ju yang tura sarfali alag alag ta mbo ta ju not pat pi ta janu na
2: plastic bottle in ya plastic se related ngana ga sok sak sok ka to inna agar dun thik bas se khuri jagah ka jama bas se dustbin eta na ngata itna dikkat chacha min jua lekin dustbin hone ke bawajood aapko matlab ngata nali sang yorba sang sakya te ngata plastic ki bottle sab thum machet du chi son sin implementation machain to isi le ngati youth ul khas taur pe education se book se related bhi hoche mein azgar sahab kyunki ngata education po implement bar question

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयदशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड को होने वाले भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होंगे। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा दर्शाती है।
1: दिस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप,
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य

0: को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
1: इनटू कंक्रीट इकोनॉमिक आउटकम।
2: श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, किसानों, हस्तशिल्प और हथकरघा कारीगरों को बहुत लाभ होगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 2,00,000 करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे। रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में एक्यूरेटेड इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से स्वदेशी सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की निगरानी में भारत की यात्रा पिछले वर्षों में आत्मनिर्भरता का एक उल्लेखनीय उदाहरण रही है। नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय औषध सूची का 7वां संस्करण जारी करते हुए उन्होंने आज ये बात कही। सुश्री पटेल ने बताया कि देश में दवाओं के प्रतिकूल प्रभावों की निगरानी के लिए इस समय 1,100 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं। दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने, पहचान के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ से सतर्क रहने को कहा है। विभाग ने कहा है कि एक दंडनीय अपराध है, इसमें 3 वर्ष तक का कारावास और 50,00,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। विभाग ने लोगों से अपना सिम कार्ड किसी और के साथ साझा न करने और फर्जी दस्तावेजों के जरिए सिम कार्ड न खरीदने की सलाह दी है। संचार मंत्रालय ने लोगों को संचार साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए अपने मोबाइल का नियमित रूप से सत्यापन करने का परामर्श दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि महानदी जल विवाद को बातचीत से शीघ्र ही सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और केंद्र में भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सत्ता में है। वर्ष 2018 से महानदी जल विवाद ट्यूबनिल के पास लंबित इस मामले को अब केंद्रीय जल आयोग को सौंप दिया गया है। भारतीय सौर ऊर्जा निगम ने आज नई दिल्ली में 15वां स्थापना दिवस मनाया। समारोह को संबोधित करते हुए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद यसो नाइक ने भरोसा जताया कि भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को हासिल करने में निगम की भूमिका सदैव अग्रणी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेख अहमद बिन राशिद अल मक्तूम के निधन पर दुख व्यक्त किया है। वे दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम के भाई थे। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि समाज की सेवा के लिए उनके प्रयासों को आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 564 अंक की बढ़त के साथ 74,859 पर बंद हुआ। निफ्टी 68 अंक बढ़कर 23,414 पर आ गया। जापान एशियाई खेलों में निशानेबाजी में आज भारत ने 3 पदक जीते। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक अपने नाम किए। वहीं इसी प्रतियोगिता की टीम स्पर्धा में भारत ने रजत पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: दक्सा सपायंतेस आकाशवाणी दिल्ली कना हिंदी ना अंग्रेजी खबर यूनियन पिन मीडिया में कंग अच्छे आकाशवाणी करगी लिखा नाजिर न्यूत
1: दस लाख की लॉटरी मेरे लिए वाओ
2: फर्जी ऑफर से होशियार
3: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
4: ये कहानी है एक घरेलू खातून और उसके हमजात की। बिजली का बिल, किराना, स्कूल की फीस सब हो गया, बन गया।

0: बजट।
1: हाँ, 5,000 बच गए तो नई साड़ी ले ले।
0: ना,
1: पिछले महीने ही तो ली थी।
0: एक और।
1: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में महफूज।

0: رسائل ده تول كيت شو مات كي سرمان في العلاقة تول كيت شيء جاب بعد
1: تول كيت بتجي عندنا
0: تول كيت دين خان سرمان لربس بحر جيز دين سامان كون
1: بس
0: دين جاب بعد فور اكزامبل سرمان ده एक सरमान है ना ज्यादातर कौन लगे गैस्ट्रिक इश्यूज हो चुके
1: कैसा उन्होंने
0: देनों आते हैं देनों कब्जी मिचे या
1: मानसिक
0: आते सॉफ्ट वेक्स स्पोर्टर चीज देनों जा सुन चुके
1: कैसा
0: या तो कौन ला चिकन का फोको ना दोनी का स्कूच एक
1: अनमेंट
0: चीज या आते देनों शुगर टेस्ट भी दोन सारा किट को नियम बजाक मैट्रेस एट्रेस को इनका सोर छना दोन फिलामेंट ने दोन सख सख से या बेसिक दवाइयां दोन संगतन स्किट्सिंग में जाप पत्थर माने पिले तो दैट्स ऑल अ केयर बार क्वेश्चन की क्योंकि अर्जेंट पना दिन के माह मुश्किल चाचन दे फिर फैमिली खास का फैमिली रोल मोहल्ले की ज़्यादत अगर फैमिली ठीक बसे केयर बना काफी हद तक दी जून कम से चांस प्रोएक्टिव रोल को दे अलावा कौन खुरे जान पे कहाँ इम्पोर्टेंट फैक्टर है अगर जान पर ठीक जाना है जान पर ठीक जाके मतलब पर बैलेंस डाइट जाना है
1: कैसे
0: लेकिन ज्यादा कैलोरीज खुरी रिक्वायरमेंट है साबिक आरडी है साबिक डेली आरडी है साबिक अगर कैलोरीज पे जाना या बैलेंस डाइट में प्रोटीन खुरी इंटेक पर ठीक बजे जाना 30-50% या 10% पर फैट पो या 30-50% सब पर यदि कार्ब्स कुन दोनों सागर बैलेंस बसे जाना जो हमेशा आते बॉडी नर्चरिंग न्यूरॉन्स को नर्चरिंग यानी मल्टी विटामिन्स या मिनरल गागा चीज को रिक्वायरमेंट है दोन बराबर खुरी प्रोपोर्शन पे लेना आता दी चीज पे का लेबा काफी हद तक उसका प्रोटेक्टिव रोल होता है दे अलावा जान पे अलावा एक्सरसाइज में सख्त रोल होता है एक्सरसाइज ना योगा तो दे फिलहाल रेगुलर मॉर्निंग ना खुरी टाइम से जैसे मॉर्निंग आधा एक घंटा रेगुलर एक्सरसाइज बना क्योंकि दे उस जब ना एरी ऑर्गन कुन रिवाइटलाइज बिंदु पना कि न्यूरॉन कुन अलग अलग जगह न खराब ले बे दोन सब ले बना
1: ब्लड सर्कुलेशन
0: ब्लड सर्कुलेशन अच्छा लुस बना एक्टिव लुस है दे अलावा एक इम्पोर्टेंट स्टडी चीज़ है तब इसमें कि सिल बना लेके ज़्यादा फायदा चाहते रहना शोभु सिल रीडिंग बना देख ले यारे फॉर एग्जांपल आती का मतलब आलिम टाइप ही आलिम यानी सिलखन आलिम चाहे वो गलाइन पेन आलिम में ज्यादा अच्छी बात क्या रीड बे खम मुताला ज्यादा दे मिला मेमोरी लॉस छे जो स्टडी की आदत की ज्यादा रीड बना ज्यादा एक्टिव यानी
1: दिमाग
0: को ज्यादा एक्टिव जख पना यार वाला दी इशू पर मेमोरी लॉस छे यानी और जच्चा यार वाला कम छे छन जो मैं एक इंपॉर्टेंट दरे सुमा स्टडीज को निन तो देन गाती कोशिश बार कोशिश की गाती दरे मत की निना उमर सोसिंग आया अच्छे से लेते सिलवाना फुफानी कैसा कलेक्ट पचास बंदे जब किधो मियों मरोशन सिल्वे मतलब सब्जेक्ट पर निरान ला एबीसीडी सिल्वा मेरे को मार यारी जिंदगी हालात यहाँ स्टेशन के ऊपर शोभु ने हर सुले अवेलेबल है या बेसिक दरे हर लैंग्वेज इन दरे उर्दू इन दुनिया भरी शोभु है और उर्दू में इतना इंग्लिश यंखन ला इंग्लिश क्या है हिंदी इवन हिंदी यंखन ला हिंदी दुनिया में आती है देखो ये पिंडे अरे परेशानी का ते काजदान अगर सरमान कोशिश बार कोशिश की अगर काजदा खान सिल बंग मत ना दोन बार बार सिल इन दुक्चा ता दोस्त दो बच्चन की अरे दिमाग एक्टिव जाते हैं न्यूरॉन कुन बार बार दिन कनेक्ट छेन लुस पना दोन इन यानी सिग्नल कुन पास इन इलेक्ट्रिकल ना मैकेनिकल देनु एनर्जी इन पास छेन दुक पना खासकर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देनु एक्शन पोटेंशियल दोन सारा सोड चेंजेस दो छेन दुक पनी अराउंड दी मेमोरी लॉस छे इशू को कम छछन
1: बिल्कुल
0: एक मतलब फैक्चुअल स्टडी इन मतलब ये ऐसे चंग दो हेग में मतलब साइंटिफिक स्टडी इनकी जितना आप रीडिंग बिना यारान लॉन्ग टाइम है ना चांस पर कम है कि यारान ला अल्जाइमर छे जो इन सुन खुरी आती प्रिवेंटिव मेजर्स को तन आता यूं मत कि खुदा ना खासता अल्जाइमर सुन मैं आता हूँ क्योर पर दक्षिण अमेरिका अल्जाइमर ही मैं आता हूँ कोशिश पर बात कि सिम्टम कुन या खुआ अच्छी तकलीफ कुन कम में फिला आते लगा डिफरेंट समान है देन आता हूँ ज्यादातर कोलिन स्ट्रेस इनहिबिटर्स कुन यूज बात कि कोलिन एसिटाइल कोलिन आते ज्यादा ज्यादा एसिटाइल कोलिन जब भी हार्मोन जो दो ज्यादा ज्यादा न्यूरोन कुन ब्रेन कुन हेल्प चुता रिलैक्स लुस्चिन या दे एक्टिविटी ठीक लुस भी फैला देन आते लगा इसमें का देत की मेमेंटरी इंडोना पेजिल जखन या रिवास्टिक माइन जखन या गैलेंटा माइन जखन दिस वाज मन कुंदर काफी ट्रायल इन ट्रायल इन सीओ सिन और क्लिनिकल यूज इन से डू लेने तो दुखरी जगह कसम मगर अगर प्रिवेंटिव मेजर्स कुन ठीक बसे बन काफी हद तक आता है

0: उन्होंने
1: लाइफ स्टाइल पर सबसे
0: बिल्कुल
1: इम्पोर्टेंट है,
0: बिल्कुल
1: दे
0: बिल्कुल
1: अलावा डाइट पर इम्पोर्टेंट है,
0: उन्होंने
1: देखा ना यार, एक्सरसाइज पर इम्पोर्टेंट है,
0: निश्चित निश्चित
1: देखा ना था दिए खासकर सिलचान रीडिंग बचान
0: उन्होंने
1: को करिकुलर एक्टिविटीज को लेना एक्टिव दुख छर्मा मतलब
0: बिल्कुल
1: एज से दी मिशा कि सब कुछ बंद सो से मैंने
0: बिल्कुल
1: जब तक आपका हयात है जिंदगी है तब तक आपके पास चांस है कि अपने फिजिकल मेंटल और स्पिरिचुअल
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: अपब्रिंगिंग ग्रोथ को मेंटेन रख सकते हैं।
0: मखसूस डॉक्टर साहब मैं नरदमा लेकिन कि अति सामसन सिन लंग यारा दिमाग पो अते से एक्टिव जक्चा ना यंग ची शंग तो मजगुल जक्चा हो मैं ससन सोलो
1: बिल्कुल
0: मतलब
1: सही,
0: गैस जेरे ना लस बामी फंचा सिल बामी फंचा या गैस गतु अते सोच फिकर ची बच्ची ना कतो दिमाग पो ग्यारह रंग अते सोच चीगे और ग्यारह रंग नश चीगे अते एक्टिव ना एंगेज जब यहाँ तक फ्रेंड्स बात करते हैं साजो बाकी जैसे सब तंगती जवान उन्हें आना होगा तां सर मसून से नहीं तो लोग जैसे सी देने लिख देने सीधे नाम से नहीं आता थोम अच्छे नहीं जो कि यहाँ तंग 65 साल उम्र के मालिक नंग या अंगती जवान उन्हें देने जैसे सी जो सुबह नहीं आता हिमो छाता हूँ जो कि कौन दे अल्जीमर शिकार सोच से कि यंग देने सी लाइफस्टाइल डिजीज ना थूते कौन दे तो सुना दिख सोच नहीं
1: अल्जाइमर इन ऑफ सेंस ऑफ नाता यंग एज इन दिस सिनेमा जो और बहुत सारे फैक्टर्स है जो जैसे कि अगर खुदा ना खासा किसी स्वर की कंजेनिटल एनोमलीज होती फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम है
0: बेशक
1: तो कौन लाइन ज़्यादा चांस होते देन
0: या
1: यार क्रोमोजोम ही आते हैं जैसे 46 23 पेयर ऑफ जीन 46 क्रोमोजोम है ना देन खची का डिफेक्ट जेनेटिक उनका कुल लाइन खुनता दोन अल्जाइमर चीज़ ज़्यादा चांस उनका होना ही मतलब ज़्यादा
0: उन्होंने
1: चांस है मगर इट्स ऑल नॉर्मल मीला दिस ऑल डिमेंशिया छ चाहिए तो मल्टीपल फैक्टर है खास कर दरे एक तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी लेके ज्यादा
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: कम मतलब फॉर एग्जांपल आती न्यूरॉन को नहीं नो दुखे ही उम्मत यानी तार को लगाता है इंसुलेशन तो मतलब ना
0: बेशक बेशक
1: तो चौला तार ला इंसुलेशन उम्मत दे दुखे
0: उन्होंने
1: एक जरिए दोन इंची शाजन दोन को लेकर ले आता ला विटामिन चिरकोस पर दोन फिला
0: बेशक
1: खासकर
0: बेशक
1: विटामिन B12 कोबालामिन नेरो साइनोकोबालामिन दोन छाने दो कमी छाने चीज को लेकर ले आती दे दोन जत पसो
0: जात
1: छाचिन
0: पतो से नहीं
1: जत
0: कसा
1: पसो छाने देन वो यार अनला सिग्नल पे नो इंपेयर्ड सिग्नल छाने वहां से तो
0: बिल्कुल
1: न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज बहुत ज्यादा है दे अलावा यार मल्टीपल फैक्टर स्मोकिंग दोन सख्स काफी रोल है अगर स्मोकिंग या सब्सटेंस अब्यूज लेके ज्यादा लिंकन को नहीं दोनों नो मेमोरी मेमोरी का काफी असर छा क्योंकि न्यूरॉन को देना डैमेज काफी छा
0: बेशक
1: तो
0: बेशक
1: दोनों अगर मत होना प्रोटेक्ट बना सोचो दोनों चीज दे वो सब्सटेंस को निकलना अजदुर ना दे काफी रोल दे अलावा एक दरे नाता ला मोबाइल या दिस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को वजह से काफी हद तक आती अटेंशन स्पैन काफी कमजोर छाना उससे
0: बिल्कुल
1: काफी मेमोरी निका इफेक्ट छा दोनों आती इंपॉर्टेंट पुदीन के दरे दोनों सोला एक्टिविटी अति कम होती
0: कम बदल इसका सा
1: अतः तरह से ज्यादातर एक मोबाइल खुरेल 24 घंटा
0: गंगमा आराम सुन
1: स्क्रीन
0: दुर्गा
1: टाइम
0: जी
1: पर
0: शिन
1: लेगी ज्यादा अच्छा ना
0: बिल्कुल डुलबांस पंग कम एक्सरसाइज पंग कम मोबाइल इस बसे टेक्नोलॉजीज बसे गाता दरे या एक्सरसाइज शुरू करे
1: दे
0: मानो
1: फिल्म
0: दोनों
1: आती
0: तंग
1: जवान को कोशिश बार उलझन के स्किल सर्विस क्यों ये
0: हाँ
1: स्किल
0: कैसे
1: से इसके बाद जब ना यारे सुमा सुमा देनो न्यूरॉन कुन एक्टिवेट बचन यार ला
0: बेशक बेशक
1: नया इन्फॉर्मेशन छाना नया देनो जनरेट छन दोनों इसी बात जब आती दिमाग काफी एक्टिव
0: एक्टिव
1: जक्शन तो कोशिश बार उसने स्किल खास कर
0: स्किल
1: लक्ष्य
0: हुनर चित्तू
1: सिल्ले के ज्यादा रोल की लक्ष्य यूं ला
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: लॉन्ग टर्म में जाके
0: अल्जाइमर
1: डिमेंशिया
0: इंफेक्शन है
1: उस चीजात कुन
0: बेशक
1: कम छे चांस
0: मखसूस जाग साहब बना देखिए अल्जाइमर का जिस दिलचस्पी ना तो इसको लायरी के ना फेस्पा बस स्पेनिक में ना मामी ग्लेन चाहे जिनमें तुझ तुझ ना इस दिन चिता मेरे डॉक्टर साहब इन ना यार अंग लाजुक पे का एज ए डॉक्टर ना ती डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का रील ये कई रंग जुक से जो चाना प्रोग्राम इस संसे का दिली दी जा पुमा दे नजर जग से वॉल अल्जाइमर डे जग पे का ना ती करगी ले में मांग सुना फेस संसे के प्रोग्राम ये ना कनो लायरी तरफ मेरा सुख फ्रेंची साले जो
1: दिनी जग पे बनस्बत नज दी उजर भी कोशिश बत की अदा ला दर सब पास काफी चीज मरी कोई भी कोशिश बस की अंदर समझाई बे बाकी दी बीमारी दफसना ना तेरे रिसर्च नहीं होती दिका हर कुछ समय बाद दिका नया नया रिसर्च उम्मत नाता ना सुमा इंफॉर्मेशन थोबा कि अल्जाइमर वाकई ची कंसों सिन सुगा रिस्क फैक्टर को दो ची वजह से कम चल दू तो क्यों एक लंबा प्रोसेस है आता कोशिश पदी बार उशिन कि अगर दी चीज पे कर आता मतलब चुपे तो आती फिजिकली एक्टिव जगचा बॉडी खुरी है सारे मेंटेन जगचा कैलोरीज बराबर जगचा मेंटली आता अलग अलग एक्सरसाइज हो चीन या आती मेंटली काफी कनेक्टेड जगचा फैमिली गैदरिंग्स को नहीं कनेक्ट जगचा खास कर दी सरमान इन दी छे इशू को सरमान लाल जाए मरसों से होता
0: कैसे
1: खून ला काफी केयर बचा
0: नो नो
1: दे अलावा कोई मेडिसिन नहीं होता अगर दे या अल्जाइमर ने

0: खुंती जय का जिंदगी मुकाम चिकलेप सौंदो जैसे दारे सचिन तेंदुलकर खुरा जरना या विराट कोहली जरना या हिंदुस्तान माना मैक्सिमम सेवा गो अक्सर जो है माना मैं मंगस जम्मू कश्मीर अंडर 19 सस्पेंसर 2008 में आया देता ना अच्छा मेरड यूपीआई है खेर बना ओदे प्रवीण कुमार जरखन इंडिया टीम ही बॉलर छो खुद देता रंजीत से छो यूपी टीम छना ओदे चना ना खोंग यम बथुक चना खोंग खोंग संग सा गे चंग इम्पोर्टेंट सीखो मैं तो खोस खोंती देना फोकस बिंदु की देना स्पोर्ट्स चिक चिक पड़े ना अगर खो बॉलर इन का तो बॉलर ही बॉलिंग है फोकस बसे बॉलिंग पर गचो सही बचिन गचो बचिन या नेक्स्ट मैच में गचो बारुशिन ओदन सब प्रिपरेशन बेचो या छाना यंबो खो ही खमा पान ओदन सब संग सपोर्ट बिंदु दरेंगा जरा जना नी अरी फील्ड पर आई सोकिन सर या दक्षा चंडीगढ़ टीम पो अति सेकंड टॉप टीम है मत खेलो इंडिया हिसाब से ना
1: बिल्कुल
0: थोड़ा जो छाना इंडिया में सेकंड नंबर पे आता है चंडीगढ़ का टीम मगर नति खो इच्छी दूसरे बना खो अतामन ले छुपे गए मैं न कहो स्टेट टीम चिंगम्बो न बजट में खुनता खुनती खर्चे का दी चिक थकरिंग लाइयों से फ्रू नीदे ग्राम प्या दुख से तत से सनमो बसे छचाओ वो उदो कमाल चिन मजो उदो चीज अच्छी बने फ्रू ला इनकरेजमेंट चीसों से खो सपोर्ट चीख थोप से खो जिया मेहनत मांगो बचिन दे उदो अति देर दुख मिल दूंगा अति देर फ्रू सपोर्ट चिया स्पोर्ट चिया जा शिक्षते से मिसाल के तौर पर हराइक सो से होना ना उधर उदय ना बिल्कुल क्या बसता मॉरल डाउन बसता चा फ्री कसा छा ना उदय चीज पंगाती देर अवेयरनेस दुख में दुख उदय फिर अती शायद एडमिनिस्ट्रेशन या सामशिक स्पोर्ट्स एसोसिएशन यो उदय नि संग सक ने बो काउंसलिंग चीज सक शिक्षे एक बानंग इम्पोर्टेंट दुख यार इस पर सही नहीं काउंसलिंग मिछा दें अती देर बिल्कुल भी दू अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी अच्छा संग उदय सक बचाओ मगर अच्छा उदय प्लेटफॉर्म पर खाशिक दिख दुख में दुख गया अत बे कोशिश बान का तो या अता शायद कोई बात सुना के अता यासारी देसारी बसता हूँ दिया ना मेन जरूरी ध्याना दुख पा सर कि तम सिंह अति पेरेंट्स स्पोर्ट्स यंग फ्रून यंग इन्वॉल्व होत सपोर्ट यंग होत वो फ्रू मारा पक्का 100% आगे जाएगा सर यार
1: मना अति दिक न जो स्वरा यरी मना सही सवा का ताना का तो मना ता थों दे जो दिक कसले सवा ता जम्मू सवा ता यंग बो सो सो हॉस्टल चीज चले या फिलहाल चले तम से खर्चा होता तो खर्चे पेने देने से ता से मान लो आते जो ता सो दो
0: जैसे कि सब जूनियर कैटेगरी स्पोर्ट्स फ्रून लंग आते सब जूनियर जरना का तो 7-8 साल ही करना 14 साल छुपेगी फ्रून सक कैटेगरी की इंसान या उदय कैटेगरी फ्रून ला खुनता खुनती लेवल ही कोई मसल हिसाब का दिन सब सब चीन सर एकेडमी या कहीं भी क्लब चीज या एसोसिएशन चीज प्राइवेट सब इतना देखा ना सब जूनियर करना जूनियर हो चुन सर या 14 एक करना 18 छुपे
1: बिल्कुल
0: जूनियर देखा ना जूनियर करना अंडर 23 उदेश बार पहुंचिन सर उदय लजा उदय संग हार्ड ड्रिक बस कोई ट्रेनिंग रूल चिन सर याद देखा ना सीनियर से उचिन जो है देखा ना वो खो सक अलग अलग जगह पार्टिसिपेट बने उचिन जो है तंग अति देर गाते कभी बा मैं दूजू अति देर इवेंट जैसे कि छा जरूरी इनकी सब जूनियर सुनते फ्रुनी खुरा अलग कम्पिटिशन छा छा रोशन जैसे कि दरे चाइना जरे या गते फॉरेन मांगमो यूरोपियन कंट्री या एशिया में जैसे कि गति मलेशिया या सिंगापुर ला या किर्गिस्तान जरे या गति दिखने छन ला चाइना जरे और दो मुल्क यंग सब जूनियर फ्रूनी खुरंग अलग कैटेगरी डुल बजू है इवेंट खुरंग उदो पार्टिसिपेट बच्चा गाते यूट्यूब दो ना फिर जूनियर ही खुरा अलग सक कैटेगरी हिसाब का इवेंट उन स्टूल्स पा देखा ना खोई अता अमाउ नि संग यंबो यंबो फ्रुनला इनकरेज बसे सपोर्ट बसे खेरे चावतांस पा हर फ्रुन खुंती खुंती लेवल दारे चाइना गोल्ड मेडल मामू दे फेलन मचा बना खो इधर मामू सपोर्ट बेनो दारे अति इंडिया शुरू सो सकता इंडिया संग दरे हाल ही कॉमनवेल्थ गेम उन्हें या एशिया एशियन लेवल गेम उन्हें गोल्ड मेडल काफी लेंस लेन माना उदय लेवल पर चीज हो सुन जब ना अति इंफ्रास्ट्रक्चर दानी बाहर साइड ला दोना खामा पानी संग सपोर्ट काफी बात जो है दोनों शायद मैं अक्सर जरूरत किसी गाचुक प्लेटफॉर्म चाहे नंग कि इंडिया में कुछ कुछ स्टेट चिंगिश हो जैसे हरियाणा जरे या

0: महाराष्ट्र
1: या स्टेट नी सु महाराष्ट्र या दिचिलो आसाम सिक्किम साइड ला स्टेट छ जा नॉर्थ ईस्ट साइड ला खो इस ची बस दु सर की फ्रुन ला जो गाव नेशनल पार्टिसिपेट पे दिया गोल्ड मेडल क्यों उनको जॉब रिजर्व जग से उनको जॉब दे ही देते हैं या ओलंपिक या कहीं पे कुछ लाते हैं तो दे देते हैं दरे ओदे चीज पुंगाती लद्दाख यहाँ सोच जो है लद्दाख यहाँ अगर फ्रुन इस कोई अगर ओलंपिक या मेडल खोना का तो उसको तो करोड़ों में पैसा मिलेगा या पैसा मीन्स कि उसको इनाम इनकरेजमेंट जीतो छाया इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल या कोई गोल्ड मेडल लाता है तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ मिलता है सर अभी अभी डायरेक्ट कहते हैं स्पोर्ट्स पॉलिसी या एशिया लेवल या से खान पर अलग थोपचा मेडल कोई भी मेडल लाएगा तो इसके साथ कॉमनवेल्थ या अगर कोई यार अति फ्रुचिंग अचीवमेंट गला रिख्यों गोल्ड मेडल सीखियों इंडिया के लिए देखा ना वो हमारा अति स्टेट इस उसको अलग से थोड़ा सपोर्ट भी करेगा प्लस उसको जॉब भी एक अच्छे लेवल गेजेटेड पोस्ट डीएसपी रहेंगी पोस्ट सर या छा तो दी चीज पी फे नाम छुपे फ्रुनला सपोर्ट में बात अच्छा पता चौक तना दरे आज ये मौका मिला आप लोग ऑल इंडिया रेडियो थ्रू थाना संगारी तरफ ने पब्लिक आवाम हजर इनकी यंतेस रंगसुसु फ्रून अगर रंग इस खरीते बो स्पोर्ट्स एकेडमी चंग गति दे रंग काफी एकेडमी होत मार्शल आर्ट ही होत अच्छा जो गति देर क्रिकेट ही होत गति देर दिया चोला वॉलीबॉल ही होत फुटबॉल ही होत हर चीज सी लगभग लगभग आइस हॉकी होत उदन सकेंग पेरेंट्स इस अतामास क्यों से फ्रून हवाला बस सब से फ्रून यंबो खरीते खेलना उदन सकेंग मान अर्दमो चाचिन जो बनिस्बत फ्रून दिया चुगंग अति आवारा दुख पिसंग उदन मान अर्गलवा चाचिन सारे सवाक न माना जरूरी सर देखो इंसानी समाज सिल पिफिया समाज छुत पिफिया एजुकेशन जरूरी मगर स्पोर्ट्स एक ऐसी उदय चौक शीशीन खेलकूद पु कि यरंग यरंग फर्क लो शिक्षा में कि ऊपर नीचे ऊंच नीच दी सके फर्क बिल्कुल लो शिक्षा में दोनों मी कॉन्टेक्ट मंगमो बढ़ाई छाचिन स्पोर्ट्स अलग अलग किस्म मीन यम्बो दरे मिसाल नेशनल चीज चीज चीज से ना तो हिंदुस्तानी हर कोने योखन स्टेट मी सक ने बुथुक चा सुन छा ना ओदे चीज पुस इंसान नीचे छचिन जरबाना एक्सपोजर थप चिन जुया और मी मंगमो काफी इंसान यंग खुरी यंग कॉन्फिडेंस यो चिन खुरेस खुरी लेवाली का चीज सक बांग यंग चिन मैं ओदे फिया आते इनकरेजमेंट स्पोर्ट्स यंग बा जरूरी इन जुया गलत चीज सुनी का ना थारिंग सोल्यूशन जो खेल कूद इस माना काफी
0: जहन पमाना कम से कम द फिया लोशन हाज
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: ارغوا فانجاس بوخران سون زهر لا فانجاس دخصني دي ماحول پنو قران شون دخصن غتا اتا ما تام تجيك سجو فروسلي تمه در بش خلطو مت لكن
1: بالکل يان غلط اثر چيكتو بيت
0: زرچاس بي پريشاني کي مو چندون سغا دخصن من سق ما تامان من ماکسيمم در جات از من کي موش سينه گتو سق سيز كان دنيا تون كان بلاتا چي شنو تما کو ما چي شنو درچاس بوتو او ور دمو سپران گتين يان كانو چاپي يارس لپچوس چنا واسامندوك सांसु कह रहे यंग रेस्पेक्टिंग अति आतामान ला यारी एक्सपीरियंस ऐसा बिका कि खुआ जलते आतामान ना सार तास्पा जलते मामे खुआ जरूर गोशा में दस्ते दर लेकिन यारी एक्सपीरियंस ऐसा बिका चाम चिक अति फ्रून ला खुआ रोक्स बार गोशा का आतामान इस देर रोक्स पेस्ट्रोल का शायद खुं मन दुन लशोक मान लो अति संबाद आसन डिस्ट्रिक्ट लेवल में नया अति स्टेट लेवल में नेशनल लेवल में इंटरनेशनल लेवल सपिक
1: कसा
0: ताकि सों से ह्रीमिंग पो नाइमिंग युल्पेमिंग बाकी माने कंट्री मिंग सबके
1: साथ कसा जो बिल्कुल बेशक दी माने माने जरूरी जो अगर दक्षा हालात पो दो चुकियो कि यंग यंग चीज सागं खाशी मसल नंग जरे यंग अति प्रोनिक प्रेशर तंग मिसं जरूरी चचा दुख जो कि अगर प्रो शोक ना स्पोर्ट्स यंग खेलकूद यंग ओदे के खेरे सपोर्ट बनां देखा ना फ्री जिंदगी लंचा दुख पजुआ दे फियांगस गती अतामान ला फ्रुबस बी चाम शिग गती खिते लद्दाख गति करगिल यंग चाम शिग युल युल अतामान जुग सोत रंग सो सोई फ्रून अगर खेलकूद यंग जा शिक्षा चुक से हिमायत रिगबा से खुँ यंग स्पा रिग चार रिग से चुकना खुँ फिजिकल फिटनेस पंग सेहत पंग दमोल शिंजु छाना न्यम्बो न्यम्बो खुँ जिंदगी हल्दान चिंजु चा जरबाना दक्षांग अति यूटी गवर्नमेंट इस स्पोर्ट्स कोटा जक्सो जो स्पोर्ट्स खिलाड़ियों ने फिया 4% नौकरी यहाँ रिजर्वेशन आ जक्सिन छाना ओदे मौका अते नाम सुपिक फ्रून ला यहाँ स्पर्श से मिस्ते चुक दे दे सुपिक ओदे मौका पिक फ्रून लेपचांग में लिहाजा चाम शिंगाती

0: लद्दाख रावा रेडी एरिया से काउंसल करगिल एग्जीक्यूटिव काउंसलर इंजीनियर पुंचोक टशी एग्जीक्यूटिव काउंसलर न काउंसलर ही खक पे कना लोचो गथु ते खिदमत उन मलियन खो सर गब ना इस्तीफा तांस खुरी इस्तीफे बयान पियानो पुंचोक टशी दि टरछत पु जंस्कार बुद्धिस्ट एसोसिएशन अंजुमन जंस्कार जंस्कार गोनपा एसोसिएशन लंबरदार उन आम मिमासुनी मेंबर उन पार्टी एग्जीक्यूटिव दुना खुरी जमीर पुनग्रह से मलियन खो से इंजरे एसेरिन खोजा संस्कार लोकसो जिला न रावा रिवली काउंसिली नोटिफिकेशन पु फिंग से न फल्लागा हिल काउंसिल करगिली नुमाइंदे जोस्ते का लजबे चंग हर गोस खेग में पा इंजरन हिल काउंसिल संस्कार में न ग्योस्पा इलेक्शन छचस पे का फ्रलु सुन पे जरे असर बसों देवरन खोस अरगल बिल लोचप गत पु थुते मीमा सुन खिदमत बे मी न खोई कर ध्यान न रुक्स बखन रेरे न रेरे दि बेसे मी न ओशु अंगजरन खुरी हलके नाल जोंस मीमा सुन इश कबलस बर्दोन फलते बचन गंगरगे एरिया से फिला गोंबाउन सखन तंदुक लेन मिमिंग ना अर्थियंग पोंग मुन चुक्स ध्यान चोक्सला स्कित पे फाइल जंस्कार इंगिलम पु गहरिया बेमीना जंस्कार मीमा सुनंग यंबो चिंगन यन लस बसे थत खन अरगमो दुना यरगेस छन जंस्कार फियोक्स बयान लस बेमीना अर्थियंग मंग बसिन या डिस्को लजरिन चिंग इंजीनियर पुन चुक तशी दि चोक्सिक मोल्स
1: लद्दाख ला यूटील दन एर्थिंग ना लक्सन लद्दाख यन हुक सोमा इजला गाल दन यो लक्सन दी इजलाउन यन हुआंग सोमा एलएएचडीसी चुकचसी स्कोरपेन हुक सियासी हलचल लेकिन अजिंग जंग ने बुयत लो चुपियत एल एच डी सी करगिल फराय सुन अंजाम तंग से स्टिंग ना सीनियर एल एच डी सी करगिल एग्जीक्यूटिव काउंसिलर इंजीनियर पुनसोक टशी खुरी ओहदे कना इस्तीफा तंग से इंजे सल्फो बसे जरेन जंस्कार ना गची नुमाइंदे
2: जबे जंस्कार जबे यूथ जबे वुमेन तिना चुला जंस्कार नबर द एसोसिएशन जुओ प्लान नाजिन जंस्कार काउंसलर संगमा तेने जंस्कार ला डिस्ट्रिक्ट ग्रुप स्टिंग एल एच डी सी सेपरेट टॉप स्टिंग तेने रिजिग्नेशन सलाजात जर दे जुआ प्लान नाजिन ला तेने का फुन चोटे शे दिन एल एच डी सी करगिल नी तेने कोंडा रिजिग्नेशन गुनी पुला जाते नो
1: पुरगी खबर फिया जंस्कार नांगा ची नुमाइंदे स्टंजिन अंगचुक तुनांगा मोहम्मद अब्दुल्ला
0: पुरगी खबर आकाशवाणी करगिल डॉक्टर विलायत अलीस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी शेस्लिन खन फ्रू निमीन लेगिन लक्ष्यन शेस्लिन मिस्टोल चिक दन इंजरिन दि नोरो बसे मलेंखो मिमीन चिंगन फ्रलुस बच इंजरे असर सत सेवा संकल्प अभियान पे नाजोस ओरिजिनल न्यूज यूनिट आकाशवाणी करगिल छोसना रिकॉर्ड बस खन फेसबुक पॉडकास्ट शिगन दि पॉलिसी शेसि फेसबुक लोसो जोस्ता निस्टोलिक लेगिन सिंखम चनस चो से इंजरे असर इन दि पॉडकास्ट सेवा संकल्प अभियान पे नाजोस आर एन यू आकाशवाणी करगिल छोसना मलियानु खोन यत खान खचन सिरची गिनजरन मिमा सुन ल हुकूमत फन थोसन पॉलिसी उन प्रोग्राम उन दुनो गोंबा उन स्कोर ल हगुन फ्लिप चुक चाओ इनजरे असर बसों डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी द्रास लद्दाख रावा रियली एरिया से काउंसिल उन्हें दीची नातो रेगुलराइजेशन रूल पे का और बेंच दि रूल पुस सख्यत लगे बाद बखान उन दोनों क्रिम्स नातो रियाशी पौना शंटेज दो खर क्यों चाहे जरा जरसत कमेटी जार गल रब से नातो रियाशी पौनी सरकारी समस्या उन सकोल जो संख्यों से दो निकस्त उन थोन ले इंची की तंग खो सक को खान मिन जरे सको खान इन जरे जर बमिंग इन जरे जर इन ध्यान चौसला दुनमा नातोरी आर्डर उन इंतकाल उन गिरदवारी रिकॉर्ड उन गेदबत इरगल रब से रिकॉर्ड उन दुना खत खान इंतकाल इलास उन सखसबूत इस्ट्रोलिका जक परगो सुजरन खैरात लतांस खान छोस खान दुना मिमांस इमल सान सगे स्ट्रोंग लुक्स पे का फेस पास नमान जक परगो सुजरे जुवा बस आईसीडीएस संस्कार टूरिस्ट डॉग मानो पदम संस्कार ला पोषण माह अवेयरनेस ना ट्रेनिंग प्रोग्राम चिकी ग्रहल सिर बस गवे आंगनवाड़ी वर्कर उन सगे से संस्कार जिले लोकसो मलसा उन सगे ना खगलन से दियांग बरें खास पानी खगलन खान उन लर गेला जंजेश न्योस पुस बसे फ्रून ना खोक पाइरी मामानी फंथोग निस्कोर ला सिर बसों दिवास लक्ष्म से आता पे इतु से लोकसो खाचन जन सगास्ता ने फ्रून ला दीजा नुने खगेस को लन और बसे हाउ उन तांच गर्दलुक्स पुरतान पना थत खान जंजक पे मीना दीजा तीजा थुई चला उन कोल बिमीना अजीवा बसेन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सांकुस कॉलेज इफ्रोना स्टाफ मेंबर निमीना एजुकेशनल टूर चिगे ग्रल सिर बस यहां दी जखमा शिपा टूर वासला फ्रून सरनोबरा वैली तुर तुक थंग डिस्किट दुना हुंदुर लखिर बसों ग वासला कॉलेज हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स दिना सोशियोलॉजी महकमा निशेस लेन कन फ्रून ना शेस अलसाब खान उन सक अद्रे से एहियत पिन जी टूर पर सितंबर इलजे चुपिया गोजुसुंग गांव दिलजे चुपदन नथा माथोनेन अहमदाबाद इमाम जवाद फाउंडेशन जमीयत उल उलमा मदरसा इसना अशरिया करगिल लखतिका हौजा इल्मिया इसना अशरिया करगिल ल छक्षी बख्तोनी तकरीब चिगे ग्रल सिर बस गवैनुक मिंगा जुंग चुची बख्तोन पुबस तंस तकरीब यां इमाम जवाद फाउंडेशन नुमाइंदा शेख अली अकबर तुराबी मेंबर पार्लियामेंट लदा हाजी

0: तीनों कॉलेज में।
1: डोंट वरी।
0: फीस तो देखो।
2: क्या हाल है, क्या हुआ?
1: फीस की टेंशन।
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
3: आरबीआई कहता है
4: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

जिनको अक्टूबर 2027 तक मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा है कि सोपोर कस्बे की गुंजानियत को कम करने के लिए 3 अरब 23 करोड़ 41 लाख रुपए लागत वाले मनसूबे सरकार के जेर गौर हैं। वो आज असेंबली में वक्फ सवालात के दौरान एमएलए सोपोर इरशाद रसूल कार के सवाल का जवाब दे रहे थे। एमएलए मौसूफ

0: सेवा संकल्प अभियान के तहत शोबे खबर की जानिब से पेश किए जाने वाले प्रोग्रामों की सीरीज के तहत आज रात 8:30 बजे पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के मौजू पर खुसूसी प्रोग्राम पेश होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सदर सत शर्मा ने सेवा संकल्प अभियान के एक हिस्से के बतौर विजय मेमोरियल स्कूल गांधरबल में मेरे सपनों का भारत अनवान से मुनजम किए गए पेंटिंग मुकाबले में मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने मुकाबले में हिस्सा लेने वाले बच्चों की हौसला अफजाई करते हुए नरेंद्र मोदी हुकूमत की तालीम के शोबे में हुसूलयाबियों का जिक्र किया। सत शर्मा ने कहा कि मेरे सपनों का भारत पहल बच्चों और नौजवानों में भारत के तय उनके नजरिए की अक्कासी करता है। वजीर अजम नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत के अपने सफर के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। इन 25 वर्षों के सफर की कामयाबी वजीर अजम के जन सेवा से देश सेवा के जज्बे से वाजह हो जाती है। सरकार विकसित भारत 2047 का हदफ हासिल करने के लिए मुसलसल काम करती रही है। जामे तरक्की और समाजी बाइख्तियारी के नतीजे में अवामी जिंदगी में काफी बदलाव आया है। मरकजी हुकूमत की तरफ से अमलाए जा रहे प्रोजेक्टों की बदौलत जम्मू कश्मीर भी तरक्की की नई बुलंद को छू रहा है। इन प्रोजेक्टों में वादी को जम्मू से जोड़ने वाला रेल प्रोजेक्ट भी शामिल है। श्रीनगर जम्मू रेलवे लाइन पर अंजीखड़ रेल ब्रिज इंजीनियरिंग का एक शाहकार माना जा रहा है। खुसूसी सीरीज सेवा संकल्प अभियान के तहत पेश है ये रिपोर्ट।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सेवा संकल्प अभियान के तहत ऐसे बुनियादी ढांचों की तामीर पर जोर दिया जा रहा है जो लोगों को आपस में जोड़े, इलाकाई तरक्की को मजबूत बनाए, नीज रोजगार और इकतसादी मौके पैदा करें। मुल्क भर में तरक्याती कामों में बुनियादी ढांचे की तरक्की पर खास तवज्जो दी जा रही है और जम्मू कश्मीर में भी राबते और आमदरफ्त के बुनियादी ढांचे में नुमाया तरक्की हो रही है। इसकी एक अहम मिसाल रियासी जिले में तामीर किया गया अंजीखड़ पुल है। ये भारत का पहला केबल स्टेट रेलवे पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक यानी USBRL का एक अहम हिस्सा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जून 2025 में इस पुल का इफ्तिताह किया था। अंजी पुल दरियाई अंजी की वादी से तकरीबन 331 मीटर की बुलंदी पर वाका है जिसकी लंबाई 725 मीटर है और इसे 96 मजबूत केबलों की मदद हासिल है। इस पुल की तामीर रेलवे राबते के मैदान में एक अहम इंजीनियरिंग कामयाबी है जो कश्मीर वादी को मुल्क के बाकी हिस्सों से जोड़ने में मदद दे रही है। अंजी पुल जैसे मनसूबों से लोगों और सामान की आमदरफ्त आसान हो रही है। शबीरुज्जमा, आकाशवाणी न्यूज, श्रीनगर।
0: मुल्क भर में जारी स्वच्छता ही सेवा मुहिम के तहत आज आकाशवाणी श्रीनगर के अहतमाम से गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल खानियार श्रीनगर में एक सफाई प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में आकाशवाणी श्रीनगर के प्रोग्राम सरबरा गुलाम रसूल आकून, कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस की सरबरा समीना शाह, शोबे खबर के सरबरा इशफाक अहमद शाह और सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर टी स्पाल डन के अलावा दीगर अमले ने भी शिरकत की। इस मौके पर स्कूल के अंदर सफाई मुहिम चलाए जाने के अलावा तालिबे इल्मों को माहौलियात को आलूदगी से पाक रखने के लिए सफाई सुथराई की अहमियत के बारे में बताया गया। आज अमन का बैनुल अक्वामी दिन है। ये दिन हर साल 21 सितंबर को आलमी अमन और अदम तशद्दुद की रिवायात को तकवीत बख्शने के लिए मनाया जाता है। इस साल इस दिन का मौजू है इन्वेस्टिंग पीस फॉर एवरीवन एवरीवेयर एवरीडे। आज के दिन की मुनासबत से मुल्क भर में कई तकरीबात मुनकद हुई जिनमें आलमी सतह पर कयाम अमन की अहमियत और इंसानियत की बका के लिए अमन के पैगाम को आम करने पर जोर दिया गया। स्क्वास्ट कश्मीर के कृषि विज्ञान केंद्र गांधरबल के एहतमाम से आज बागपति गुंड कंगन में एक प्रोग्राम मुनकद हुआ जिस दौरान ICAR के तहत कबायली तबकों से ताल्लुक रखने वाले 200 किसानों में आलाती शावर्जी तकसीम किए गए। मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 30.2 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 11.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 33.8 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में कल तुलू आफ्ताब सुबह 6:18 और गुरूब आफ्ताब शाम 6:28 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। एक वक्फे के बाद आप सुनिए कानून साजिया में हुई कार्रवाई का खुलासा। हमें दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।
2: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
3: तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
4: दिमाग चार्ज कर रखना।
5: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
4: देखा
3: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल,

0: क्या करोगे?
1: फ्री वाई फाई है ना? सुन बुद्धू, सुधर जा।
0: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाई फाई
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
0: RBI कहता है
3: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
4: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे।
5: कानून साज असेंबली में आज की कार्रवाई का खुलासा लेकर हम हाजिर। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली का 7 नशस्तों पर मुश्तमिल मौसमी खजां का इजलास आज श्रीनगर में शुरू हुआ, लेकिन पहले ही रोज कानून साजी के बजाय सियासी और अवामी नोयत के मुतद्दिद मसाइल ने ऐवान की कार्रवाई पर गलबा हासिल कर लिया। इजलास का आगाज साबिक वुजरा और अरकान असेंबली डॉक्टर शेख मुस्तफा कमाल, धर्मपाल और गुलाम हसन के इंतकाल पर स्पीकर अब्दुर्रहीम राथर की जानिब से ताजियती करारदाद पेश करने से हुआ। ऐवान ने मरहूमीन के एहतराम में 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी मरहूम सियासी रहनुमाओं और साबिक ओहदेदारों को खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि अवामी जिंदगी से वाबस्ता अफराद ने अपनी अपनी हैसियत में लोगों की खिदमत की और किसी इंसान से गलती से मुकम्मल तौर पर पाक होने की तवक्को नहीं की जा सकती है। वजीर आला ने इस मौके पर असेंबली में ताजियती हवालों को मुख्तसर रखने की तजवीज भी पेश की ताकि पार्लियामेंट की तर्ज पर मुख्तसर ताजियत के बाद ऐवान मामूल की कार्रवाई की तरफ बढ़ सके। इस तजवीज की अहमियत इसलिए भी है कि आज असेंबली ने एक अरसे से जारी रिवायत में तब्दीली का अमली मुजाहिरा किया। माजी में ताजियती हवालों के बाद अमूमन ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी जाती थी, जबकि आज ताजियत और 2 मिनट की खामोशी के बाद वक्फे सवालात और दीगर कारोबार शुरू करने की कोशिश की गई। कानून साजी के एतबार से आज के एजेंडे में एक अहम मामला जल जीवन मिशन में मुबैन बेजाबियों से मुतलिक हाउस कमेटी की रिपोर्ट पे पेश करना था। जस्टिस हसनैन मसूदी की सरबराही में कायम कमेटी की ये रिपोर्ट ऐवान के सामने रखे जाने वाली अहम दस्तावेजात में शामिल है। इसके अलावा वजीर बराई कॉपरेटिव जावेद अहमद डार की जानिब से जम्मू कश्मीर को कॉपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1989 में तरमीम से मुतलिक बिल पेश किया जाना भी आज के एजेंडे का हिस्सा था। मुजवजा कानून में जम्मू कश्मीर सेल्फ रिलायंट कोऑपरेटिव एक्ट 1999 में को मनसूख करने और मौजूदा इदारों के लिए अबूरी इंतजाम की गुंजाइश भी शामिल है। ताहम कानून साजी का यह अमल ज्यादा देर जारी न रह सका। वक्फे सवाल शुरू होते ही अपोजिशन अरकान ने मुख्तलिफ अवामी मसाइल पर एहतजाज शुरू कर दिया। नेशनल हेल्थ मिशन के मुलाजमीन की मुस्तकली, डेलीविजर्स के मुस्तकबिल, मुबैना तौर पर आउटसोर्सिंग के जरिए मुलाजिमतों की फराहमी, बिजली के निरखों में इजाफा और बिजली व पानी की सूरत हाल जैसे मसाइल ऐवान के मरकजी तवज्जो बन गए। शोर शराबे के बायस स्पीकर को बार बार अरकान से अपनी निशस्तों पर वापस आने और कार्रवाई में तआवुन करने की अपील करना पड़ी। बिलाखिर बड़ी हंगामा आराई के बाद ऐवान की कार्रवाई कल सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दी गई। आज की कार्रवाई का एक नुमाया सियासी पहलू जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली का मुतालबा भी रहा। हुक्मरान इत्तेहाद से वाबस्ता अरकान ने ऐवान के अंदर रियासती हैसियत की बहाली के हक में नारे बुलंद किए, जबकि बीजेपी अरकान ने मुख्तलिफ अवामी मसाइल पर एहतजाज किया। CPIM के रुकन मोहम्मद यूसुफ तारीगामी ने भी रियासती हैसियत की बहाली के मामले को ऐवान में उठाया। इस तरह पहले ही रोज ऐवान में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सियासी इख्तिलाफात भी नुमाया हो गए। इस इजलास का एक और अहम पहलू इसका महदूद दौरानिया है। 7 नशस्तों पर मुश्तमिल मौजूदा कैलेंडर 21 से 30 सितंबर तक फैला हुआ है। इस मुख्तसर मुद्दत के बावजूद असेंबली सेक्रेटरी को तकरीबन 650 सवालात मौसूल हुए हैं, जबकि प्राइवेट मेंबर बिल्स और करारदादों की बड़ी तादाद ज़ेरे गौर है। मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से यह मुतालबा सामने आया है कि अवामी मसाइल पर तफसीली बहस के लिए इजलास की मुद्दत में इजाफा किया जाए। कांग्रेस और बीजेपी दोनों की जानिब से ज्यादा नशस्तों का मुतालबा सामने आना इस मसले की सियासी अहमियत को जाहिर करता है। आइंदा दिनों में रोजगार, सरकारी व नीम सरकारी मुलाजमीन की मुस्तकरी, बिजली, पानी, रिजर्वेशन, पॉलिसी आउटसोर्सिंग, बेरोजगारी, तरक्याती मंसूबों और हुकूमत के इंतखाबी वादों पर बहस मुतवक्के है। प्राइवेट मेंबर करारदादों में रोजगार पॉलिसी, डेलीवेजर्स की मुस्तकरी, बेघर खानदानों के लिए जमीन, पानी के रिवायती वसाइल की बहाली, सड़क राबितों और बुनियादी शहरी सहूलियात जैसे मामला भी शामिल हैं। यूं देखा जाए तो आज का दिन कानून साजी से ज्यादा अवामी मसाइल के इजहार, हुकूमत से जवाब तलबी और ऐवान के सियासी मिजाज के तायुन का दिन रहा। असल इम्तिहान आने वाले दिनों में होगा कि 7 नशस्तों का यह महदूद वक्त किस हद तक कानून साजी, अवामी शिकायत के इजाले, हुकूमती जवाबदेही और अहम पॉलिसी मामलात पर बामानी बहस के लिए इस्तेमाल हो पाता है। कल 22 सितंबर को सरकारी कैलेंडर के मुताबिक

जय हिंद। फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम फौजी भाई सुनने वाले तमाम सामीन की खिदमत में मेरा खलूस भरा अदब। तो आइए सामीन, संगीत से बड़ी इस प्रोग्राम के आगाज में सुनते हैं फिल्म यात्रा से एक गीत, जिसे गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। अहमद वसी के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है खय्याम ने।

अभी विवाह फिल्म में आपने सुरेश वाडकर और कुमार सानू को सुना। नगमे निगार थे जावेद अख्तर और मौसिकार थे रविंद्र जैन। लीजिए प्रोग्राम का अगला गीत सुनते हैं, दिल ढूंढता है फिल्म से, जिसे गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। ताहिर हुसैन के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है अन्नू मलिक ने।

0: मुझे शर्म आती है।
1: देखो तुम नहीं कहोगी तो मेरी जान निकल जाएगी।
0: आई लव यू।
2: Yeah!

0: धीरे धीरे हाले हाले हाले हाले धीरे धीरे दिल को मिली है मंजिल।
1: भीगी भीगी रात में प्यारी प्यारी बात में खोया खोया रहता है दिल।
0: रुक रुक रुक

0: उद्यमों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, किसानों को लाभ मिलेगा। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति जताई। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। रक्षा मंत्रालय ने T-72 और T-90 टैंकों के लिए स्वदेशी सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए पुणे की एक निजी कंपनी के साथ 586 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा और बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए नए दिशा निर्देश जारी। व्लादिमीर पुतिन की सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी का संसद में बहुमत बरकरार। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 3 और पदक जीते। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष टीम ने बांग्लादेश को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयादशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त रहेगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा दर्शाती है।
1: दिस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप,
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्ययोजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर छात्र और युवा आवागमन के लिए क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।
1: It is an important moment for our businesses.
2: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 191,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
1: मीट इंडिया स्केल एंड ग्रोइंग डिमांड।
0: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति व्यक्त की है। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि चौथे दौर की बातचीत पिछले सप्ताह मुंबई में हुई थी। अमरीका के भारी भरकम शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। भारत का सेमीकंडक्टर बाजार वर्ष 2026 में करीब 64 अरब डॉलर से बढ़कर 2035 तक 200 अरब डॉलर का होने का अनुमान है। अर्नेस्ट एंड यंग ग्लोबल लिमिटेड और इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन की सेमीकॉन इंडिया 2.0 शीर्षक वाली रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई। ये रिपोर्ट सेमीकॉन इंडिया 2026 के दौरान जारी की गई। रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि यह अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया।
3: सहायक विद्युत इकाइयां APU, टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबिलाइजेशन सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन का एक वैकल्पिक स्रोत है। स्वदेशी रूप से विकसित APU को शामिल करने से भारतीय सेना की मशीनीकृत इकाइयों की संचालन तत्परता, विश्वसनीयता, स्थायित्व और अधिक मजबूत होगी। यह खरीद बख्तरबंद प्लेटफॉर्मों के महत्वपूर्ण उपप्रणाली के स्वदेशीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और उद्योग के नेतृत्व में किए गए अनुसंधान और विकास को दर्शाती है। यह अनुबंध सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है और एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय रक्षा उद्योग के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए X पर @AIRNewsHindi को फॉलो करें

0: और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने तीव्र गति और नियंत्रित प्रवेश वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना और डिजाइन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये दिशा निर्देश सभी आगामी 4 और 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड तथा ब्राउन फील्ड हाई स्पीड राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू होंगे। इनका उद्देश्य इन राजमार्गों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में एक रूपता लाना है। इससे तकनीकी मानकों में समानता, सड़क सुरक्षा और परिचालन दक्षता मजबूत करने में सहायता मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मेरठ में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल और जिला स्तर तक संगठन की तैयारियों की समीक्षा की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर आए श्री नवीन ने कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद भी किया। समीक्षा बैठक में संगठन की स्थिति, आगामी चुनाव की तैयारियों और जमीनी स्तर से मिलने वाली प्रतिक्रियाओं पर चर्चा की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज विज्ञान मंत्रालयों और विभागों के बीच बेहतर समन्वय, शहर आधारित वैज्ञानिक समूह विकसित करने और देश की वैज्ञानिक उपलब्धियों को व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचाने पर बल दिया। डॉ. सिंह ने नई और प्रभावशाली वैज्ञानिक उपलब्धियों की लगातार पहचान करने और उन्हें सामने लाने पर भी बल दिया, ताकि प्रयोगशालाओं और संस्थाओं में हो रहे महत्वपूर्ण कार्यों की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति कल शाम एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी।
2: लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के विश्व के सबसे बड़े स्टैचू के लिए मशहूर गुजरात के एकता नगर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है। कल मंगलवार को राष्ट्रपति एकता नगर में आयोजित 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। इस अवसर पर भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारी इस ऐतिहासिक आयोजन के साक्षी बनने के लिए एकता नगर पहुंच चुके हैं। एकता नगर में पुरस्कार समारोह के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 सितंबर को अपने दौरे के अंतिम चरण में वडोदरा के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में एक मार्केटिंग अधिकारी को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। गोदामों से जुड़ी रिश्वत की शिकायत पर ये कार्रवाई की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस दौरान जनसेवा से देश सेवा मंत्र के साथ सेवा और सुशासन उनका ध्येय रहा है और इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित है। ये प्रतिबद्धता समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है। इससे लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के माध्यम से इस सोच को किस तरह धरातल पर उतारा गया है।
3: डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना कई देशों में सेवाओं को नियंत्रित करने, लेन देन करने और वितरित करने के तरीकों को नया रूप दे रही है। इस परिवर्तन में भारत डिजिटल प्रणालियों के एक बड़े उपयोगकर्ता से एक बड़े पैमाने पर डिजिटल के निर्माता के रूप में आगे बढ़ रहा है। भारत ने साझा डिजिटल बुनियादी ढांचे की 3 परतों का निर्माण किया है। पहला आधार है, जो एक सत्यापन योग्य पहचान प्रदान करता है। UPI भुगतान करने वाले व्यक्ति को बिना किसी शुल्क के किसी भी 2 बैंक खातों के बीच तुरंत पैसे स्थानांतरित करता है। खाता एग्रीगेटर ढांचा एक नागरिक को सहमति के साथ ऋणदाता या बीमाकर्ता के साथ अपना वित्तीय रिकॉर्ड साझा करने देता है। इस महीने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UPI की उल्लेखनीय 10 साल की यात्रा और उसकी बढ़ती वैश्विक पहुंच को रेखांकित किया।
4: 10 वर्ष पहले जब मैं कहता था कि आपका बैंक आपकी फिंगर टिप्स पर होगा तो कुछ लोगों को ये असंभव लगता था, लेकिन आज वही करोड़ों लोग जो पीढ़ियों से बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे, वे भारत में फिनटेक ग्रोथ के बड़े ड्राइवर बन गए हैं। अकेले अगस्त महीने में ही UPI से 2400 करोड़ से ज्यादा ट्रांजेक्शन हुए हैं। और साथियों, UPI अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, भारत का UPI अब दुनिया के 11 देशों में लाइव है। ये अद्भुत आंकड़े हैं जो हमें बताते हैं कि हमने कितना लंबा सफर तय किया है।
3: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर निवासी दिव्य प्रताप सिंह ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कहा कि पहले लेन देन करने के लिए

0: कई किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती थी, लेकिन अब पैसा बड़े पैमाने पर यूपीआई के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है।
1: इसने हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था पे एक मूल चूल परिवर्तन लाया है और आपसी लेन देन को बहुत ही सुलभ कर दिया है। जो गरीब व्यक्ति था वो आज बैंक से जुड़ गया है यूपीआई के जरिए, तो एक तरीके का आर्थिक हमें जुड़ाव भी देखने को मिला है पूरे देश भर पे। तो उस दृष्टिकोण से देखें तो यूपीआई ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस देश को परिवर्तन करने के लिए।
0: डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के साथ भारत की यात्रा डिजिटल युग में विकास और शासन की कल्पना करने के तरीके में एक व्यापक बदलाव को दर्शाती है। वित्तीय समावेशन और पहचान की पहुंच का विस्तार करने के प्रयास के रूप में जो शुरू हुआ वो एक व्यापक अंतर संचालित संरचना में परिपक्व हो गया है, जो आर्थिक गतिविधि, सार्वजनिक सेवा वितरण और संस्थागत क्षमता को रेखांकित करता है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने आज आकाशवाणी लेह में केंद्र के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने कार्यक्रम निर्माण, समाचार संकलन और समाचार निर्माण, श्रोता संपर्क, विषय वस्तु की गुणवत्ता और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में सार्वजनिक सेवा प्रसारण की भूमिका पर चर्चा की। प्रधानमंत्री स्मृति चिन्हों की ई नीलामी का 8वां संस्करण जारी है। इसमें गुजरात की समृद्ध सांस्कृतिक और पारंपरिक विरासत से जुड़े कई स्मृति चिन्ह शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
2: ये आकाशवाणी है। रूस के केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने कहा है कि सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसद के निचले सदन ड्यूमा के चुनाव में 57.83% वोट हासिल कर बहुमत फिर प्राप्त कर लिया है। ये परिणाम राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सत्ता पर मजबूत पकड़ बनाए रखने में सहायता करेंगे। निर्वाचन आयोग की अध्यक्ष एला पाम फिलोवा ने कहा कि 95.18% मतों की गिनती के बाद यूनाइटेड रशिया पार्टी 57.83% वोटों के साथ सबसे आगे है। दुबई के शासक और संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम के भाई शेख अहमद बिन राशिद अल मक्तूम का आज निधन हो गया। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने सोशल मीडिया पर एक संदेश साझा करते हुए अपने भाई के निधन पर शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने शेख अहमद बिन राशिद अल मक्तूम के निधन पर दुख व्यक्त किया है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में आज 3 और पदक जीत लिए। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक जीता। वहीं इसी प्रतियोगिता की पुरुष टीम स्पर्धा में भारत ने रजत पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ने आज बांग्लादेश को 3 मैचों में हरा दिया। क्वार्टर फाइनल में कल भारत का सामना मेजबान जापान से होगा। उधर सुचिका तारियाल मिक्स मार्शल आर्ट्स में देश के लिए पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। पदक तालिका में भारत 4 रजत, 2 कांस्य सहित कुल 6 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर को लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, समझौते से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और किसानों को लाभ मिलेगा। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति जताई। रक्षा मंत्रालय ने T-72 और T-90 टैंकों के लिए स्वदेशी सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए पुणे की एक निजी कंपनी के साथ 586 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा और बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए नए दिशा निर्देश जारी। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 3 और पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। India-New Zealand free trade agreement to come into force from 20th of next month. Commerce and Industry Minister

0: उन्तक पोदी एजुकेशन ही मकसद पुखरंग सिर्फ और सिर्फ गता जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन जिस मालूस पा दी एजुकेशन पुस गता और ऑल गति पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सोसाइटी डेवलपमेंट इफ यंग दी एजुकेशन पु मार्क आसन इज दर इज इज दियन स्पेस शिक्षक मार दमो मौजूद है जसंग गता ना दुख सोट खाने दिया शर्मा आता अमान सगान ला शायद कस्मत च मेट पा कोई सोदे मेट पा कोंदे सना शेस पु सिलचा मसुंग या नंग पेनु गजती परेशानी दोंबे फोक्स खवादी शेस पु सबचे मसों में ना दे आता मानी फिर दरी गतिस पर आता ना कतो ना पैनों के जंच स्कूल चेकिंग ना या गज तेरे मांग चुकों ही दुन लड़िंग सुयों ना कतो उधर से ना गते मोबाइल पर दुन लोखुरे दुगना या चिकचिक ने बोस पर आता ना कतो दुमिन मांग आता हिंदुस्तान जर ना कतो कसीरु लिसानी मुलुक जिसों जो उधर से तेरे चाहे दून गंग में इसका तो माल लोकसो यों तो अंग्रेजी यों तो हिंदी यों तो उर्दू यों तो चाहे दून गंग मो गंग में ये बंग आता ना थूट पिफिया कौन है बस पराता में पिफिया आते समझों कौन सा पर लेप चुप पिफिया कौन का ना स्पराना आते लेन मिफिया दून गंग मिफिया आता ना स्कच्चर वाश जों हाजू आते तजुर्बान ना आते लोप शेतुन सा कौन सा पर लेप चुप पिफिया आता ना स्कच्चर यों मार वाश जों स्कच्चर लोप से उतर वाश जों स्कच्चर ब्रेश बार वाश जों चाहे दून गंग मिफिया आता ना एजुकेशन बुमा खाचे ने जो चाहे दी इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन स्कॉर्पियो ये रस मनाजिव सल बस
1: यहाँ नवीं दासियाँ ना है जिया अलग अलग एग्जाम ही तैयारी नवीं मना हालांकि मन फ्रूल ना पता होने यहाँ फर्स्ट सेकंड क्लास याना ना चिल दंचस इंजरे छोसों से ना ना नी एम पुगा चुक्षो नी मकसद पुगा चुक्षो जे दक्षस फ्रूल ना पता होनो
0: योजन
1: ओ कसा दोनों दक्षस फ्रूल ना दक्ष नवीं दासियाँ ना यहाँ ना जगह खचे थोंजू ना ती कोटा चुक्षुन ला चंडीगढ़ चुक्षुन ला नवीं दासियाँ ना खो आ फुआ इंजीनियरिंग लाना यारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का होल जैसे कौन अलग इंट्रेंस तैयारी बची नुक्शु
0: बाशेस
1: छाना मेडिकल फील्ड हो जरा मेडिकल फील्ड यानुक सुअ मेडिकल फील्ड यहाँ चीन आते कौन अलग इंट्रेंस तैयारी बची नुक सुअ इंजीनियरिंग तैयारी बची नुक
0: मर सुनसे ना हजु
1: सुनसे ना हजु कासा सो एकेडमी की तैयारी बची नुक सो आईटीआई तैयारी बची नुक सो पॉलिटेक्निक की तैयारी बची नुक दोन दखस कंपटीशन वजह से कसों सिंजुआ
0: बिल्कुल
1: दखस कंपटीशन तो मन हाई लेवल लेकिन हालांकि नतस नति करगिल बार यानो करगिल लेवल का स्पेरा तांग एरा क्लास 4 सी एग्जाम अंक को 17-18000 एप्लीकेंट देने ऑन एप्लीकेशन ऑन दैट पोस्ट पे फिला छाना कंपटीशन पोस्ट मन किमो देन सों छाना स्किल्स गा फुचीला कंसिस्टेंसी होतना गा फुचीला गा हार्डवर्क होतना मेहनत होतना मेडिकल मेडिकल फील्ड एमबीबीएस लंचिंजू इंजीनियरिंग या छचिन खोंग छाना ते एकेडमिक लंदा मन वास्ट यारा स्कोप हो चुका है एकेडमिक यानो असिस्टेंट प्रोफेसर यो लेक्चरर यो टीचर्स यो हर चीज हो चुका छाना पॉलिटेक्निक आईटीआई का स्किल्स सब चेंज हुआ खाली आईटीआई का अगर हम आते आईटीआई का लेंस दाखा यारा देखा इलेक्ट्रिशियन हो जुआ देखा यारा प्लम्बर हो जुआ
0: कसा
1: देखा मां हर चीज से मोटर मैकेनिक दुख यारा देखा स्टेनोग्राफर दुख यारा एक साल डिप्लोमा कंप्यूटर दुख छाना हर चीज से देखा दोनों

0: देना फील बुक रही हूँ एडवर्टाइज बच्चे छोटे
1: बिल्कुल जो बिल्कुल कैसा कैन ना ट्वेल्थ यानो चौक पास आना सुस ड्रॉप आउट बस इतना सुस देखने नहीं थे एकेडमिक सिलचा में ना आईटीआई
0: खुद से तो दे आईटीआई बिकॉज़ रियल पॉलिटिक्स
1: नहीं सब पर्सनल लाना काउंसलिंग चाहे एनटीएस तो चाहे या एजेंसी चीज तो काउंसलिंग मन जरूरी दुख
0: कसा
1: था एनटीएस एज ए कोऑर्डिनेटर सिटी कोऑर्डिनेटर एनटीएस

0: Then kefe pel chatsu or dena university khuni anunga ta nga seat thobe zu haju admission thobe zu. Chana di jage kanga di sferao chuma shut pe jungati khas kar akashwani kar gil snanga bin yut khan ngati ata aman sakpa ya pesa sangati shes selenu khani di sunse fun sakpa yeres di sferao chu chuna di common university interest test pu gaz zusta jage chaju yang dues gaz ushibase interest conduct bachasin gayanuk फुन ला रंगे पसंद के यूनिवर्सिटी या कॉलेज से चूज बार कोशिश ही ना या दो मिन मा खोज देंगे एग्जाम पुतांग सुना कोई कैपेबिलिटी है साबिक ख्वा अलग अलग यूनिवर्सिटी ना कॉलेज ने अनुसीर थोप जैसे रंग रंगे माल से का रंगे पसंद का दुपा दरे यंचा सीने मिंजु दूं चक्र साशिक दिया हाँ वो चले चुना
1: जी जी बख्शी जो शुजात साहब यजमान और देमो मोल जो दी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पे अनु फ्रून ला दक्षा सिंगल विंडो थोप सिंजो स्नान ला चियोत पिन गतांग यो चना या आज से चार पांच साल छह साल पहला चियोत पिन जो बना यरा पेने यो ना कल्युल न बाहर ले उनसे कॉलेज यानु एंट्रेंस तां से देन बाती ने रंग एडमिशन तो या माथो या लोग से शायद पिन या एवज देनुक एडमिशन
0: अताया कैपेबल मचानो लोग से चाहिए दिस साल बुझाया सो
1: ना बिल्कुल
0: बिल्कुल
1: ठीक दूसरा यारम ता पेने ख्याल रहेगा कानून दिल्ली से पचाचू जम्मू अच्छे दिल्ली अच्छे अलग अलग कॉलेजेस अलग अलग डेट का खुन्ती एंट्रेंस
0: तम एंट्रेंस तम बिल्कुल
1: तो मिडिल क्लास स्टूडेंट ला खास कर गाते हैं तो जो गरीब फ्रून ला चीज हाथ पिंजर बने कौन एफोर्ड मिशाद
0: पिंजर मिशाल हो सके खाचुल ना फिस्ता
1: पिंग मा खाचुल ला दिन योद ना दस दिन रिया अपने जम्मू
0: जम्मू
1: आ महीने अनुक दिल्ली होनु अलग अलग यूनिवर्सिटीज अलग अलग खुन्ती डेट का एग्जाम तंग मना गरीब फ्यूचर एफोर्ट्स है मिंदु के
0: को
1: आज तक पाचोग जरे छाना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इस चीज़ आज जरे ना सिंगल विंडो एक चोज यू दी देन ऑन इन को यूनिवर्सिटी गांव मार सेंट्रल यूनिवर्सिटी टॉप यूनिवर्सिटी इन जुआ
0: ना
1: जेएनवी जरे बीएचयू जरे दिल्ली यूनिवर्सिटी जरे दोनों गांव मार सिंगल विंडो चंकियों स्टेट यूनिवर्सिटी आयो जो डीमिट यूनिवर्सिटी आयो यहाँ सीयूटी अंदर दोनों गांव मार सिंगल विंडो चंकियों से इंट्रेंस चिचिक तांचु स्प्रूंग सारू का ये पूरी पसंद खुन्ता सिलेक्ट बच्चा कॉलेज सब यहाँ प्रेफरेंस कॉन्टेस्ट बचा अगर दे कोई मार्क्स ऐसा भी का कॉ कॉलेज तो बचा कॉ मार्क्स पे क्या रहो ना डीयू जरे बीएचयू जरे यहाँ
0: टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज कॉलेज उन्हें वो कहाँ तो चिंता
1: इंटरेस्ट सिटी का जो
0: बाशेस
1: लोग खामा दुख से जो कार्यलो पास कार्यलो सेंटर योट कार्यलो एग्जाम तांचा
0: लेपास
1: लेपास ले तांचा खाजुल पास पहले खास चमा बाजू चीक यही टाइम्स आये हमारे
0: बाजू
1: ओ खामा दुख से यहाँ एग्जाम ताऊचू यहाँ दस पंद्रह दिन लगे अपना रिजल्ट हो चीन यूनिवर्सिटी अलाउड से चीन यहाँ दीदी यूनिवर्सिटी दीदी सब्जेक्ट पे यहाँ एडमिशन थोप से
0: जरूर
1: छानक उधे टाइम पे का यही मार्क्स मैटर बचा में यही हैंडराइटिंग मैटर बचा में चिया देते ने चीज हाथ पिंजू जब बना तक यहाँ यूनिवर्सिटी चांचे यहाँ 99% ना 50 में मैं यारा देना एडमिशन थोड़ा पिन गा मिथोबा
0: मिथोबा पिन दो
1: बिल्कुल यार ये हैंडराइटिंग खराब होता गा देखो इंट्रेंस बताऊं मैं फिलहाल हैंडराइटिंग खराब होता पन खो मार्क्स कार्ड छाचा सोंग
0: छाचा सोंग बिल्कुल
1: चले दोन गंग मा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोन सा खत्म बस
0: अच्छा
1: छाने यार 99% क्यों ना यारा द इंट्रेंस पे अंदर क्वालिफाई मचा ने एडमिशन थोप चमन जिया दाएंगा 50% में मैं लेकिन गा इंट्रेंस पर दो मौसम छाना ते गा एडमिशन थोपचा जिंजुया
0: अच्छा अच्छा
1: ओ कसा सर
0: बख्शिस छाना जाफर साहब यरस मर्दमो बसे फेस संगति फ्रूनिफिया सीयूईटी यूजी ने यंबो यंबो पीजी इंटरेस्ट एग्जाम उनका जो अग्रल छात और दी तोन प्रोफेसर संगता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शॉप से मना फ्रूनिफिया बेहतरीन फैसिलिटी शिक्षक खास कर गति फ्रून लदरांग दी स्कोर पे हगो में नगत नगत हगो लिप चुक चबस और दोमो बसे मोमो यंग खर्चा मचा चुपा खुंती पसंद का रंग नंग दुख से गा यूनिवर्सिटी को चूज बना कर दू बसे दे हिसाब कोई मेहनत न करी कोशिश है हिसाब को खुद यूनिवर्सिटी दे कॉलेज थोबा छाना जाफर साहब ता नतस एनटीए इस पर आता हूँ मैं कहता नेशनल टेस्टिंग एजेंसी दी ग्रह लेकर नतां सीयूईटी जरे यूजी जरे पीजी अनु एडमिशन फिया नतां तना गत उस लाग नतां इंटरेस्ट ग्रह बचा जो यंग दी फिया गत उस चतक न तैयारी नतां फ्रूने एग्जाम पो डेन में फिया बार गोशे छाजु फिर संग नतां आम कॉलेज शुनी का छतन नतां सीधा इंटरेस्ट एग्जाम चिक डुलचा सिंह दस सब्जेक्ट पे अनु प्रेफर बसना देने का नतस तैयारी बचा पिंजु छाना दी सीईटी ग्रह लेकर ध्रुल बयोती एनटीए दी एग्जाम होने अनुक छाना गजल्ला एंट्रेंस इफ या तैयारी